उसने सात आसमान ऊपर तले बनाए, ऐ देखने वाले क्या तू खुदाए रहमान की आफरिनिश में कुछ नक्स देखता है? जरा आंख उठाकर देख, भला तुझको आसमान में कोई शिगाफ नजर आता है?

क्या उन्होंने अपने सरों पर उड़ते जानवरों को नहीं देखा जो परों को फैलाए रहते हैं और उनको सुकेड़ भी लेते हैं? खुदा के सिवा उन्हें कोई थाम नहीं सकता, बेशक वो हर चीज को देख रहा है।

0: आपकी समातों से टकराती ये आवाज यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6।
1: अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, प्रोग्राम हयात तैयबा की 29वीं नशिस्त के साथ कासिम भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। सामईन, पिछली नशिस्त में हम मदीना मुनव्वरा के अंदर नए माशरे की तश्कील का तज़किरा कर रहे थे, आज हम अपने उसी सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। इस हिकमत बालगा और इस दूरंदेशी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नए माशरे की बुनियादें उस्तवार की, लेकिन माशरे का ज़ाहरी रुख दर हकीकत इन मानवी कमालात का परतो था, जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत बहम नशीनी की बदौलत ये बुजुर्ग हस्तियाँ बहरावर हो चुकी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तालीम और तरबियत, तज़किया नफ्स और मकार में इखलाक की तरगीब में मुसलसल कोशां रहते थे और उन्हें मोहब्बत और भाईचारगी, मजद और शर्फ और इबादत और इताअत के आदाब बराबर सिखाते और बताते रहते थे। एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि कौन सा इस्लाम बेहतर है, यानी इस्लाम में कौन सा अमल बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम खाना खिलाओ और शनासा और गैर शनासा सभी को सलाम करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखा तो अच्छी तरह समझ गया कि ये किसी झूठे आदमी का चेहरा नहीं हो सकता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बात जो इरशाद फरमाई वो ये थी, ए लोगो, सलाम फैलाओ, खाना खिलाओ, सुलह रहमी करो और रात में जब लोग सो रहे हों नमाज पढ़ो, जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, वो शख्स जन्नत में दाखिल ना होगा जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों और तबाहकारियों से मामून और महफूज ना रहे। और फरमाते थे, मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से मुसलमान महफूज रहे। और फरमाते थे, तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि अपने भाई के लिए वही चीज़ पसंद कर ले जो खुद अपने लिए पसंद करता है। और फरमाते थे, सारे मोमिनीन एक आदमी की तरह हैं कि अगर इसकी आंख में तकलीफ हो तो सारे जिस्म को तकलीफ महसूस होती है और अगर सर में तकलीफ हो तो सारे जिस्म को तकलीफ महसूस होती है। और फरमाते, मोमिन मोमिन के लिए इमारत की तरह है जिसका बाज को कुवत पहुंचाता है। और फरमाते, आपस में बोगज ना रखो, बाहम हसद ना करो, एक दूसरे से पीठ ना फेरो और अल्लाह के बंदे और भाई भाई बनकर रहो। किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि अपने भाई को 3 दिन से ऊपर छोड़ रहे। और फरमाते, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करे और ना उससे दुश्मन के हवाले करे। और जो शख्स अपने भाई की हाजत में कोशा होगा अल्लाह उसकी हाजत में कोशा होगा। और जो शख्स किसी मुसलमान से कोई गम और दुख दूर करेगा अल्लाह उस शख्स से रोज़े क़यामत के

0: अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हों मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हों मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: यूसीपी की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे डेवऑप्स के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर ज़ुल्किफ़ुर हसन, अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे CI और CD के बारे में, और उसमें आपने जिक्र किया टूल चेन का। तो सर, आजकल कौन सी पॉपुलर टूल चेन चल रही है, हमारे सुनने वालों को उसके बारे में आगाही दें।
2: मैम, जिस तरीके से अभी हमने बात भी की स्पेसिफिकली CI/CD की, CI/CD के अंदर बेसिकली अगर हम डेवलपमेंट लैंग्वेजेस की बात करें, फुल स्टैक और मन स्टैक दो हमारे पास डिफरेंट डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी उसके अंदर हम डिफरेंट लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं
1: जी।
2: और ना सिर्फ वो लैंग्वेजेस हैं, वो फ्रेमवर्क्स भी हैं। अब उन फ्रेमवर्क्स के अंदर फर्दर जो हम चीज बहुत ज्यादा लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमने एक चीज डिप्लॉय कर दी, डेवलप कर दी, क्लाइंट की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो ये चाहता है कि फॉर एग्जांपल, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया
1: जी।
2: और आप ये चाहते हैं कि आप, यानी फॉर एग्जांपल जो पॉपअप स्क्रीन आपके पास आए तो वो आपसे साइन इन या साइन अप मांगे। बहुत सारे अगर हम अपने FIP स्टूडेंट्स की बात करें तो वो जब भी कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हैं वो भूल जाते हैं कि हमने वैलिडेशन करनी है
1: जी।
2: वैलिडेशन का मतलब ये है कि हम कोई भी ईमेल एड्रेस डाल रहे हैं तो हमने उसके पासवर्ड की कोई सर्टन लेंथ या डिफिकल्टी लेवल डिक्लेयर करना है बैकएंड पे, ताकि अगर वो किसी भी क्लाइंट को हैंडओवर करें तो किसी तरीके का कोई फिशिंग अटैक, कोई मैन इन मिडल अटैक या ओवरऑल पूरा का पूरा सिस्टम जो एट स्टेक ना हो और उसकी जो रिलायबिलिटी वो हायर है
1: जी।
2: अब जो फास्ट की बात हो रही है, टूल चेन की बात हो रही है, हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला टूल जो है वो Jenkins है। Jenkins क्या करता है, बेसिकली आपकी टोटल ऑटोमेशन जो है वो Jenkins पे है। फिर आते हैं हमारे पास डॉकर और Kubernetes, ये दोनों के दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जो ऑटोमेशन हम कर चुके हैं उसी के अंदर ही, फॉर एग्जाम्पल ने भी जैसे आपको कहा कि हम कोई भी चीज डेवलप करते हैं तो हम एक, यानी अगर डॉकर्स और Jenkins की या Kubernetes की बात करें तो एक प्लेटफॉर्म को डील कर रहा होता है और एक उसके डेवलपमेंट को डील कर रहा होता है। देखें, पहले आज से 20 साल पहले क्या होता था पाकिस्तान के अंदर, अगर हम बात करें तो मोस्टली हमारे पास क्लाइंट्स रेफरल्स के बेसिस पे आते थे और वहां प्रॉब्लम क्या होता था कि वो ये कहते थे कि आप अपने सॉफ्टवेयर हाउस में, जैसे नेटसोल है, सिस्टम्स है, पाकिस्तान के बहुत पाइनियर सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, तो उनको कहा जाता था कि आप अपने इन्वायरमेंट में, यानी अपने सॉफ्टवेयर हाउस में एक इन्वायरमेंट बनाए, यानी एक सर्वर कन्फिगर करें, उस इन्वायरमेंट के अंदर सारी की सारी क्लाइंट रिक्वायरमेंट डिप्लॉय करें, रेडीनेस करें और फिर एक मीटिंग करें, उनको दिखाएं कि ये आपकी रिक्वायरमेंट थी, ये हमारी प्रोडक्ट रेडी होगी। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस अगर आप ओके करते हैं तो आप सेम एनवायरनमेंट अपनी तरफ क्रिएट करें और हम मंथ लेंगे, 2 मंथ्स लेंगे और डिप्लॉय करेंगे
1: जी।
2: तो अब उस चीज को टोटली खत्म कर दिया गया, यानी वो जो सर्वर ऑन प्रीमिसेस था वो खत्म करके एक नया कॉन्सेप्ट आगे से क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं
1: जी।
2: और क्लाउड कंप्यूटिंग में आपके पास 3 बहुत बड़े जो है वो वेंडर्स हैं, जिसमें सबसे पहले Amazon वेब सर्विस, फिर आपके पास गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म और थर्ड माइक्रोसॉफ्ट Azure। करेंटली अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की बात करें तो FOIDCS के अंदर हम अपने स्टूडेंट्स को क्लाउड कंप्यूटिंग के कोर्स के अंदर 3 सर्टिफिकेशंस भी करा रहे हैं, जिसका मेन मकसद क्या है कि हम उन्हें फाउंडेशन लेवल
1: जी,
2: उनको डिप्लॉयमेंट लेवल और CI/CD, ये तीनों, यानी सोल्यूशन आर्किटेक्ट की चीजें बनानी किस तरह, डेवलप किस तरह करनी है, डिफरेंट यूज केसेस देके, केस स्टडीज से उनको थ्योरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट CI/CD से रेलेवेंट टास्क देके, डिप्लॉय करके, क्लास में दिखा के, ताकि उनको क्लास में किया हुआ काम जब इंडस्ट्री में लैंड करें। अब जितनी भी इस वक्त लिंक्डइन पे जॉब्स आ रही हैं उसमें फुल स्टैक, मन स्टैक प्लस GCP, Azure, AWS का एक्सपीरियंस मांगा जाता
1: जी।
2: तो we should be thankful to Amazon, specifically then our university, कि उन्होंने हमें ये पूरा पूरा प्लेटफॉर्म दिया और उस प्लेटफॉर्म की बेस के ऊपर करंटली अगर हम देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर परफॉर्मिंग रियली वेल। हमारे क्लाउड के जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएटेड हैं अभी तक कोई भी जो है वो बेरोजगार नहीं है
1: माशाल्लाह से, यानी हम बिल्कुल प्रोफेशनल्स हम रेडी करके भेज रहे हैं,
2: रेडीनेस है, मार्केट रेडीनेस को हम फॉलो कर रहे हैं।
1: जबरदस्त। अच्छा सर, अगर हम ऑटोमेशन की बात करते हैं और ऑटोमेशन में अगर कुछ फेलियर हो जाता है तो सबसे इम्पोर्टेंट हमें इशू डिटेक्ट करना और फिर उसको रिजोल्व करना है। तो सर कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो हमें इस सारे प्रोसेस में हेल्प कर सकती हैं?
2: देखिए मैडम, बहुत वैलिड क्वेश्चन है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि दुनिया में एक रूल है, उसे कहते हैं रोल बैक या बैकअप्स।
1: जी,
2: माइक्रोसॉफ्ट ले लें, गूगल ले लें, अमेजोन ले लें, लोकल इंडस्ट्री उठा लें, सॉफ्टवेयर हाउसेज उठा लें, जितनी भी टेक इंडस्ट्री इस वक्त एग्जिस्ट करती है, वो कोई भी प्रोडक्ट बनाती है हमेशा 3 बैकअप्स रखती है, एक ऑन प्रीमिसेस, एक ऑफ प्रीमिसेस और एक डीआर जिसे हम डिजास्टर रिकवरी कहते हैं।
1: रिक्वायरमेंट ही है।
2: हाँ जी, और ये तीनों चीजें इसलिए की जाती हैं कि अल्लाह ना करे कि मेन सर्वर डाउन हो गया। मैं ISP की एग्जांपल देता हूँ, आपके मुल्क के अंदर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज दी ओनली सर्विस प्रोवाइडर, बाकी सारे सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। PDSL डाउन हो तो पाकिस्तान डाउन हो जाता है। Whereas आप US में हो, UK में हो, मिडल ईस्ट में हो, यू हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस कि अगर PDSL एक एग्जांपल है, PDSL डाउन हो गया तो कोई भी अदर जो जैन है या कोई भी और जो नेटवर्क है वो फौरी तौर पे अप हो जाएगा। तो बताने का मकसद ये कि ये जो बैकअप का कल्चर है ये इसलिए बनाया गया कि हम वीकली, मैं एग्जांपल, जो तो क्रिटिकल सर्वर्स हैं वो तो 24 आवर, यानी बैंकिंग सेक्टर सबसे क्रिटिकल, बैंकिंग सेक्टर और मेडिकल सेक्टर।
1: बिल्कुल,
2: बैंकिंग सेक्टर क्यों क्रिटिकल है, आप देखें ऑल द टाइम ट्रांजेक्शन चल रही होती, वहां ब्लिंक ऑफ आई का भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते है। वो अल्लाह ना करे कि सिस्टम डाउन हो गया, इंटरनेट डाउन हो गया, उनके इंटरनली वो गड़बड़ हो गई, तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रांजेक्शन है अक्रॉस द ग्लोब। मैं पाकिस्तान की बात करूं तो कोई भी बैंक जो है वो ये बियर ही नहीं कर सकता कि क्लाइंट की कोई भी ट्रांजेक्शन उनके मेन सिस्टम में पंच ना हो, वो ATM की ट्रांजेक्शन है, वो ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग है, व्हाटएवर, या कैश है, क्लियरिंग है, वो व्हाटएवर, वो यानी साइमल्टेनियसली मेन सर्वर पर भी और साइमल्टेनियसली बैकअप पर भी। लेकिन अगर कोई डाउन हो जाए, मेन सर्वर डाउन हो जाए, तो फौरी तौर पे जो बैकअप सर्वर है या DR है, ब्लिंक ऑफ आई में वो सेटिंग है, ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन है। और सबसे ज्यादा जो इश्यूज आते हैं वो मिस कॉन्फ़िगरेशन के, या जो पैचेज आए होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की हम बात करें तो विंडोज के अंदर वो बार बार भेजते हैं कि, यानी फॉर एग्जांपल वीक अगो, 10 डेज अगो कोई एक पैच भेजते हैं कि अब इस टाइम पर विंडोज को ये वाला पैच इंस्टॉल करना चाहिए यूजर को, सो दैट के वो इस जो तरह के अटैक्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो उनको फेस ना हो
1: और वर्किंग भी स्मूथ हो।
2: जी
1: अच्छा सर, अगर कोई फ्रेशर स्टूडेंट DevOps को सीखना चाहता है तो सर उसे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए?
2: बहुत वैलिड क्वेश्चन मैडम। इस वक्त अगर मैं HEC की बात करूँ तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है DLSEI, डिजिटल लर्निंग स्किल एनहांसमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने थ्रू HEC कोर्सेरा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, और उस कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया कि यूनिवर्सिटी के एक्टिव जो लर्नर्स हैं, देखिए हर बंदे ने एक अंडर ग्रेड की होती है, एक पोस्ट ग्रेड, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम इतनी फास्ट चेंजेस हैं, जो CS हमने पढ़ा था 2005-06 में आज वो CS नहीं रहा, जो इलेक्टिव हमने 2005-06 में पढ़े थे आज वो इलेक्टिव एग्जिस्ट नहीं कर, तो आप इस एज में इतने सीनियर होके दोबारा डिग्री करने नहीं जाते, आप साथ साथ स्किल्स इंप्रूव करते हैं। जिस तरह आजकल का दौर जनरेटिव AI का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो हमने अगर उस टाइम पर AI या जनरेटिव AI को नहीं पढ़ा तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब हम ट्रैश हो गए। वी नीड टू इम्प्रूव क्विकली, वी नीड टू लर्न विद द पेस ऑफ द वर्ल्ड, सो दैट कि हम फौरी तौर पर कूप अप करें। और अगर हम अपने स्टूडेंट्स बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट्स की बात करें तो नंबर 1 कोर्सेरा, नंबर 2 जो डैम है, नंबर 3 यूट्यूब। ये देखें, इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं किसी को फोकस करूं, आप तीनों प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हैं। जिन्होंने थोरेटिकल पार्ट से चलना है वो जो डेमे या कोर्सेरा को ले लें, उनके अंदर भी वीडियोस हैं। लेकिन यूट्यूब में इसलिए कहता हूं कि मैंने खुद, मैं अपनी एग्जांपल भी लूं कि माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, ये टॉप दुनिया की IT के जो है वो सेटअप्स हैं, उनकी इंटरव्यू क्रैक करने की भी वीडियोज वहां हैं कि आपने इंटरव्यू की प्रेपरेशन किस तरह करनी। तो इन आर ग्रेजुएट्स करंटली लोकली तो वो क्रैक कर लेते हैं, बिकॉज मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि हम मार्केट रेडीनेस के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, और थैंक्स टू डॉक्टर अमजद, स्पेसिफिकली डॉक्टर मोहसिन, कि उनकी एक विजन है, उनका एक, उन्होंने हमें एक लाइन दी, डायरेक्शन दी कि इसको फॉलो करें। लेकिन इन पैरेलल टू दैट उसमें जो एक्टिविटी रोल है वो हम तमाम फैकल्टी मेंबर्स का, वो तमाम फैकल्टी मेंबर्स जो मन स्टैक, फुल स्टैक, DevOps, क्लाउड सिक्योरिटी, ये फ्यूचर ट्रेंड है, इसके ऊपर ये अगर हम नहीं करते तो हम वे बैक हो जाएंगे फ्रॉम इंडस्ट्री रेडीनेस से।
1: बिल्कुल लिसनर्स, वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक का, हमारे साथ रहें, सुनते रहें FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This
2: is 92.6.
3: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जुल्किफल हसन के साथ डेवऑप के बारे में। अपनी गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। सर, डेवऑप्स में अगर कल्चर बनाने का हम बात करते हैं तो इसमें टीम वर्क या टीम कोलेबोरेशन का क्या रोल है?
4: मैडम, इस वक्त अगर हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की पाकिस्तान के अंदर बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं, बहुत सारी ऐसी ट्रांजिशन है। अगर मैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की बात करूं, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की बात करूं, पाशा की बात करूं, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एसोसिएशन की बात करूं, तो कुछ स्टैंडर्ड जिस तरह पाकिस्तान बने हुए 75 ईयर्स 78 ईयर्स हो गए, पाकिस्तान के अंदर डेटा प्रोटेक्शन एक्ट और साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है, लेकिन डेटा से रेलेवेंट स्पेसिफिकली इस तरह की ट्रेनिंग्स या जो इंडस्ट्री रेडीनेस से रेलेवेंट बहुत ज्यादा काम नहीं हो रहा। वो कल्चर किस तरीके से आना है? देखें, जितने इंडस्ट्री के अंदर इस वक्त लोग बैठे हैं, सीईओज हैं, सीओज हैं, सीटीओज हैं, वो तमाम लोग जो हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं और वो तमाम लोग जो इंडस्ट्री को एक किसी ना किसी एक डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं स्पेसिफिकली, उनको अपने अंडर जो कमांड लोग हैं उनको स्पेसिफिक, जिस तरह पहले ही होता था, मैं एग्जांपल देता हूँ कि आई वर्क फॉर एग्रो एंड फॉर फर्टिलाइजर, तो वहां पर उनके अपने इंटर्न है, जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में भी सीपीई है, सेंटर फॉर प्रोफेशनल एक्सलेंस। तो होता यह कि यूनिवर्सिटी के अंदर से ही डिपार्टमेंट नॉमिनेट करता है कुछ फैकल्टी मेंबर्स को कि ये फैकल्टी मेंबर्स को हम ये ट्रेनिंग्स कराना चाहते हैं, तो आप काइंडली सीपीई को कहते हैं कि आप इंडस्ट्री से या यूनिवर्सिटी के अंदर से कुछ सीनियर इनकी इन लाइंस पर ट्रेनिंग करते हैं। जिस समय एग्जांपल देता हूँ, आजकल एचईसी ने सीएलओ पीएलओ ओबीई वाला जो इनिशिएटिव लिया उस पर हमारे डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग्स चल रही। तो इंडस्ट्री के अंदर, सॉफ्टवेयर हाउसेज के अंदर जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उनके अंदर ये चीज इनकॉर्पोरेट करें, स्पेसिफिक लर्निंग से रेलेवेंट कल्चर क्योंकि बिल्ड करना है। तो वो ये है कि वो तमाम लोग जो काफी ज्यादा जिनको 10 इयर्स प्लस हो गए एक ही डोमेन में, उनकी इन नए इमर्जिंग ट्रेंड्स के ऊपर ट्रेनिंग्स करें। और ये एक दो दिन से नहीं, अगर आप कहें कि 1 वीक 1 मंथ 6 मंथ्स की ट्रेनिंग कर ली तो सारा कुछ आ गया, ऐसे नहीं है। 2 मंथ्स की ट्रेनिंग करें, फिर उनको इंडस्ट्री में भेजें, चेक करें कहां लैग करें, वापस बुलाएं, फिर बुला के उन स्पेसिफिक पे ट्रेनिंग करें। इट विल टेक अ ईयर, बट वंस दे विल बी ग्रूम्ड दे विल बी अ मास्टरपीस फॉर द इंडस्ट्री एंड फॉर द सॉफ्टवेयर हाउस फॉर्चुनेटली।
3: बिल्कुल सर, अगर हम डेवऑप्स के फ्यूचर की बात करें तो आपके नजदीक इस साल सबसे बड़ा ट्रेंड क्या होगा?
4: सबसे बड़ा ट्रेंड इस वक्त जो है वो थैंक्स टू गूगल सबसे पहले, फिर अमेजोन एंड माइक्रोसॉफ्ट। गूगल का क्यों थैंक्स किया कि दिस इज द 7th ईयर कंटिन्यूस आई एम वर्किंग विद गूगल, गूगल पाकिस्तान, टेक वैली इस्लामाबाद, और वो उनका इनिशिएटिव ये है कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एंड ग्रेजुएट्स के लिए एक प्रोग्राम रन करते हैं और उसका नाम है क्लाउड सीखो। उसका मेन मकसद क्या है, वो इस उनके इनिशिएटिव का मेन गोल क्या है कि वो ये करते हैं कि जो भी करंटली एक इमर्जिंग डोमेन है उससे रेलेवेंट 5 to 10 कोर्सेज प्लस उनकी प्रैक्टिकल लैब यानी वो यूज केसेस उनकी डिप्लॉयमेंट। तो इस वक्त जो 2025 के अंदर मजीद इसको आगे लेके चलना है वो ये है कि जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो $100 के वाउचर्स देता है स्टूडेंट्स को, अमेजोन की बात करें तो उन्होंने एकेडमी अकाउंट्स दिए, वो लर्निंग के लिए हम ऑलरेडी चला रहे हैं, गूगल ये चला रहा है। यूनिवर्सिटीज को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये करना है कि अगर किसी जगह हम लैग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बाज कैसे होता है, अगर माइक्रोसॉफ्ट की या अमेजोन की बात करें कि $100 बच्चा जल्दी यूज कर लेता है, या हमारे एंड के ऊपर सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में क्रेडिट्स की कमी आ गई, तो यूनिवर्सिटी पाकिस्तान एज अ कंट्री, HEC एज द स्टैंडर्ड एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन एक स्टैंडर्ड बिल्ड कर दे ताकि उससे वो बच्चे जो वो चीज अफोर्ड नहीं कर सकते स्पेसिफिकली, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने थ्रू प्राइम मिनिस्टर ग्लोबल IT सर्टिफिकेशन डिफरेंट इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए। करंटली हम दी फोकल पर्सन फॉर ग्लोबल IT सर्टिफिकेशन UCP, जिसके अंदर ओवर 100 प्लस ग्लोबल सर्टिफिकेशंस जिसमें ऑल इमर्जिंग सर्टिफिकेशंस हैं, उसका मुझे यहाँ पर फोकल पर्सन बनाया कि आप और सर्टिफिकेशन की ट्रेनिंग करें, वो भी फ्री है, वो भी नेवटेक UCP भी करा रहे, UCP इज पार्ट ऑफ दैट इनिशिएटिव, वो आप ट्रेनिंग करें, और अगर आप उसका ग्लोबली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन एग्जाम देना चाहते हैं वो आप टेस्ट का ग्लोबली वाउचर बाय करें, एग्जाम दें, और वो फीस हम आपको रीइंबर्स करें। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान।
3: वेरी नाइस सर। AI और मशीन लर्निंग की अगर हम बात करते हैं तो सर DevOps पाइपलाइन को ये किस तरह स्मार्टर बना रहे हैं?
4: देखिए मैडम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ रेवोल्यूशन। We have to accept other part of the world. Mein, one of my family member, they live in UK. Jags is one of the top most school in UK. वहाँ पर class 5 में AI के basics class 5 में कराए जा रहे हैं। तो again हमें academic reforms की जरूरत है पाकिस्तान के अंदर, primary level के ऊपर, secondary level पे। क्यों? क्योंकि जब तक ये चीज हम integrate नहीं करेंगे अपने छोटे बच्चों में, वहां से वो हम शुरू करेंगे AI DevOps के अंदर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे तो इंटीग्रेट कर रहा है, लेकिन ये कल्चर है, ये एक माइंड सेट है। जब तक क्या वो नीचे से यूजर एक्सेप्टेंस नहीं होगी, हमारे पेरेंट्स से हम भी अगर बात करेंगे हम ये कहेंगे नहीं AI नहीं यूज करना, आप खुद सोचो। तो मेरे ख्याल में हमें ये चाहिए कि AI से करवाओ और उसे मजीद बेहतर करो, रिफाइन करो एंड मेक इट मोर नेचुरल, ताकि वो यूजर एक्सेप्टेंस या इंडस्ट्री या एकेडेमिया में नजर ये है कि आपने लर्न किया लेकिन उसको आपने सूटेबली मॉडिफाई कर ली।
3: सर, एक सक्सेसफुल डेवोप प्रोफेशनल बनने के लिए कौन कौन सी स्किल्स जरूरी हैं?
4: सबसे पहले तो स्क्रिप्टिंग, जिसमें पाइथन है सबसे पहले, फिर बैश है, फिर क्लाउड एंड फाइनली CI/CD। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि वो तमाम ग्रेजुएट्स, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, न्यूली ग्रेजुएट, सबसे पहले तो अपनी जो स्किल्स हैं पाइथन से रेलेवेंट वो बेहतर करें। अगेन लर्निंग के लिए हमारे पास यूट्यूब है, कोर्सेरा है, इवन आप यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम OpenAI, GPT के हेल्प लें, जेमिनी को पायलट, आप टेक हेल्प, इवन आप LLM, बहुत सारे LLMs आ गए, नोटबुक LLM, यूज दोज AI टूल्स फॉर लर्निंग एंड इम्प्रूविंग योर स्किल्स। देखें प्रोग्रामिंग, इट्स बीन 15 ईयर्स इन करियर ना, यू कैन नॉट टीच प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग इज एन आर्ट। और उसमें यह है कि वो लॉजिक बिल्डिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो बच्चे के अंदर से इग्नाइट होती है, और उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि आपने बच्चे को ऐसे रियल लाइफ प्रॉब्लम देने कि वो सोचे
3: जी,
4: और फिर वो सोचेगा वर्ड में, यानी वर्ड प्रॉब्लम सोचेगा और उसको वो कन्वर्ट करे इनटू अ लॉजिक। दिस इज द क्राइटेरिया बेसिकली।
3: और सर प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी
4: है। बहुत जरूरी है जी, बहुत जरूरी।
3: लिसनर्स, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और डेवोप जैसे मॉडर्न और टेक्निकल सब्जेक्ट को बहुत आसान अल्फाज में एक्सप्लेन किया।
4: थैंक यू, जज़ाकअल्लाह।
3: उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स को डेवोप्स के बारे में बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिला होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए सुनते रहें FM 92.6 UCP की दुनिया। अल्लाह हाफिज।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCD Tuning.

www.musicbeat.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी iOS है उसके ऊपर भी ऐप अवेलेबल है, और साथ साथ आप इसे वेब रिसोर्सेज हैं उन पर भी इस हमारे प्रोग्राम उसको सुन सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली साजिद, और बड़ी ही इंस्पिरेशनल किस्म की टॉक है, और जब भी मैं इनके साथ मिलता हूँ, उनके साथ गपशप लगाता हूँ, मैं बड़ा मोटिवेटेड फील करता हूँ। और जब आज ये तशरीफ लाए थे तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके अंदर एक टीनेजर बॉय है जो चैन से बैठता नहीं, नए नए आइडियाज पे काम करता रहता है, और सोसाइटी में बेहतरी लाने के लिए डॉक्टर अली साजिद को हमेशा मैंने सरगर्म पाया। बड़ी ही जबरदस्त गुफ्तगू चल रही थी चेंज मैनेजमेंट के ऊपर। डॉक्टर साहब आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, मुल्कों की एग्जांपल भी दी कि ये इस मुल्क इस तरह से करके चेंज ले आए हैं। हम कैसे चेंज ला सकते हैं? दफातर में देखा हमने हमारे लोग बड़े रुल रहे होते हैं, काम उनके हो नहीं रहे होते, या दफातर में उस तरह की एफिशिएंसी नहीं आ रही होती, तो क्या स्टेप हैं ऐसे जिनको हम ले सकें ताकि जो हमारे दफ्तरी निज़ाम है उसमें बेहतरी आ सके?
1: अच्छा जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है और इसको एक दो मिनट में जवाब देना बड़ा मुश्किल है। मैं दो तीन मिनट लूंगा अपने इंटरनेशनल एक्सपोजर को एक्सप्लेन करूंगा। मुझे वर्ल्ड बैंक में काम करने का मौका मिला, UN की असाइनमेंट्स मैंने न्यूयॉर्क में की, और चार पांच अमेरिकन स्टूडेंट ने पढ़ाया, और मैंने उनका सिस्टम गोरों का बड़ा अंदर से देखा है, जो आम पाकिस्तानी को PhD के दरमियान में मौका नहीं मिलता। मैं 8-9 साल जब वाशिंगटन में रहा तो 5 यूनिवर्सिटियों को मैं टीचिंग की, और मैंने ह्यूमन इंटरेक्शन से ऑब्जर्व किया कि वो कौम तरक्की क्यों कर रही है। हमारा ख्याल है कि वो कौम इसलिए तरक्की कर रही है कि उनके पास वसाइल है। वसाइल इज नॉट द इशू। जीरो पानी का एक कतरा नहीं आता सिंगापुर में, वो भी तरक्की कर गया। उन्होंने कल्चर पे इन्वेस्ट किया, वर्क कल्चर पे सबसे बड़ी चीज है। और मैं बड़े फखर से एज ए मुसलमान इस अमर का इयादा करता हूँ, इस बात का इजहार करने में फखर महसूस करता हूँ कि उन्होंने मसावत महमदी की स्पिरिट को इम्बेड कर दिया दफ्तरों में। पहली बात तो ये है, कोई छोटा बंदा नीला पीला काला मजहब रंग अकीदे की बेस पे तख्सीस जुर्म है, इखलाकी जुर्म है, कानूनी भी जुर्म है, इखलाकी जुर्म।
0: बिल्कुल ठीक,
1: आप अकीदे की बेस पे आपको रोका नहीं जा सकता, रंग की बेस पे या किसी भी चीज पे, एज लॉन्ग एज आप कानून और उसके मुताबिक सोसाइटल नॉर्म के मुताबिक काम कर रहे हैं। पहली चीज तो उन्होंने ये इम्बेड कर दी वेस्ट ने अपने अंदर चेंज में। और मजे की बात यह है, 100 साल पहले USA में भी ये नहीं था। जो ब्लैक अमेरिकन थे उनका यूनिवर्सिटी में दाखिला मना था, उनका बसों में दाखिला मना था, होटलों में दाखिला मना था, रेस्टोरेंट्स में भी नहीं जा सकते थे 100 साल पहले काले। वोट देना तो बड़ी बात है, यूनिवर्सिटी में अलग उनका कमरा होता था, कुर्सी पे कोई कभी खाल खाल को मिल गया तो मिल गया, चुप के पढ़ते थे, दरवाजों से झांक के पढ़ते थे। कालों की इजाजत नहीं थी ब्लैक अमेरिकन को, जिसको अफ्रीकन अमेरिकन कहते हैं। उन्होंने देखा इससे तो मुल्क टूट जाएगा, उन्होंने कुछ अफर्मेटिव एक्शंस लिए, कुछ बड़े पॉजिटिव एक्शन लिए, और ये तकसीम और तख़सीस खत्म कर दी, और मसावत महमदी को ट्रू सेंस में उन्होंने स्टडी किया या जो भी किया उसको इम्प्लीमेंट कर।
0: बिल्कुल ठीक।
1: अब रंग नस्ल अकीदे और जिंस की बुनियाद पे तख़सीस उस सोसाइटी में खत्म हो गई है तकरीबन। आप जितना मर्जी कहें जी वो अंदर से करते हैं, कानून को नहीं करने तक, उन्होंने कानून साजी कर
0: सिस्टम से निकल गया।
1: हाँ, सिस्टम से निकाल दिया, कोई डंडी मारे तो उसको ट्रंप की तरह अंदर कर देते हैं, ट्रंप अंदर हो रहा है या चांसेस है उसके। पहले काम तो उन्होंने ये किया ना कि दूसरा था कानून का एहतराम, नो बॉडीज अबव द लॉ, और तीसरा उन्होंने टेक्नोलॉजी के जरिए हर उन्होंने शोभा जिंदगी में इंटरवेंशन की, और टेक्नोलॉजी को एज एनेबलर किया लोगों के लिए आसानियां पैदा करने। मसलन मैं आज से 25 साल पहले 28 साल पहले जब वाशिंगटन था, हर काम टेलीफोन पे हो जाता था, आपको यकीन नहीं आएगा, अब ईमेल पे हो जाता है या ऐप पे हो जाता है। पाकिस्तान में भी कुछ चीजें ऐसी आई हैं ऐप्स की वजह से कि आप टिकट बुक करा लेते हैं, बिल पे कर देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन सरकारी दफातर में जब तक 10 चक्कर में आप रुल ना लें और जलीलो खार ना हो लें सरकार के अंदर, वो काम नहीं होता। उन्होंने, आप हैरान होंगे कि मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस पाकिस्तान में मेरे पास नहीं था, अमेरिका में 30 मिनट्स में ड्राइविंग लाइसेंस मुझे मिल गया। उन्होंने प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया और उसमें ट्रांसपेरेंसी डाल दी ताकि रिश्वत ना आ सके। जब प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी आ जाती है तो स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ने लग जाती है।
0: बिल्कुल ठीक।
1: अब मैं 17वें ग्रेड से यहाँ गया था और मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, क्योंकि बड़े बड़े लंबे प्रोसेस थे ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के। वहाँ गया हूँ एज ए स्टूडेंट, उन्होंने 30 मिनट्स में $20 लिए, मेरा टेस्ट लिया कंप्यूटर ने, आईसेट चेक की, ड्राइविंग का एक टेस्ट लिया, उन्होंने कहा जी बिस्मिल्ला बैठ जाओ जी, वो जो नहीं वो ब्रालो कहता आजा बैठ जाओ साइकिल पे, उन्होंने साइकिल पे बिठा दिया, मुझे लाइसेंस दे दिया। अब ये प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन की टू सक्सेस है US या वेस्ट की, हम प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स रखते हैं। आज से 30 साल पहले UN के एक बहुत बड़े ऑफिशियल से मैं न्यूयॉर्क में मिला, तो मैंने कहा यहाँ हर चीज 30 मिनट्स में मिल जाती है, आधे घंटे में, या टेलीफोन पे मिल जाती है, आप क्यों नहीं सिंप्लीफाई करते, क्यों हर चीज के लिए आप डोमिसाइल, अगर आपने लाहौर का बनवाना हो तो उमरे खजर चाहिए, सबरे यूब चाहिए,
0: बिल्कुल,
1: या फिर 5,000 का नोट, इसके अलावा तीसरा हल ही कोई नहीं। अगर हम प्रोसेस को सिंप्लीफाई करते हैं, डोमिसाइल आइडली मुझे घर बैठे बैठे मिल जाना चाहिए, नहीं मिलता, मैं लाहौर में 50 साल से ले रहा हूँ, डोमिसाइल नहीं मिल सकता जब तक मैं 6 दिन खार ना हूँ या एजेंटों को पैसे ना दूँ। तो ये प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने की जरूरत है।

0: का प्रोसेस को डुप्लीकेशन खत्म करते हैं। अब जब आईडी कार्ड आ गया तो डोमिसाइल की जरूरत नहीं, ये प्रोसेस डुप्लीकेशन ने भी हमारी।
1: बिल्कुल सही।
0: अब इन्होंने वेस्ट ने साथ साथ पब्लिक कन्वीनियंस को चेंज मैनेजमेंट का नाम पब्लिक कन्वीनियंस दे दिया और इम्बेड कर दिया सोसाइटी के हर हिस्से में। नतीजा क्या हुआ कि लोगों की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ गई, पूरा पूरा दिन। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जी, उनकी अदालतों में चेंज मैनेजमेंट कैसे आया, उनकी लीडरशिप ने इम्बेड किया। अदालतों के रात 8 बजे तक खुली रखते हैं, अगर आप दिन में अदालत में जा सकते रात को 8 बजे चले जाएं, संडे को चले जाएं, सैटरडे को चले जाएं, ताकि आपका दफ्तर में छुट्टी ना लेनी पड़े। दफ्तर में छुट्टी एक प्रोफेसर लेता है तो 4 वाइवे मिस हो जाते हैं। एक ब्रेन सर्जन अदालत में पेशी के लिए जाता है दिन में तो पीछे 4 ब्रेन सर्जरी के बंदे मर जाते हैं।
1: ऐसे ही है।
0: तो क्यों ना हम सिंप्लीफाई करें और पब्लिक कन्वीनियंस को हर प्रोसेस के अंदर इम्बेड करते हैं। अगर प्रोसेस के अंदर पब्लिक कन्वीनियंस और पब्लिक कम्फर्ट होगा तो आपको मदीना की रियासत जाने का पहला स्टेप होगा। मदीना की रियासत महज मजहबी अकायद की तकरार का नाम नहीं है, लोगों के लिए कंफर्ट, कन्वीनियंस और आसानियां पैदा करने का नाम है, जो इश्फाक मत कहते कहते खत्म हो गए कि आसानियां पैदा करो। अब वेस्ट ने आसानियां पैदा कर दी मैनेजमेंट ऑफ चेंज के नाम पे, और एक दरमंदा शख्स को, एक मरे हुए शख्स को, एक बूढ़ी औरत को वो सोशल जस्टिस दे दिया जो कि एक प्राइम मिनिस्टर को मिल सकता है। ये कमाल है, इसलिए लोग वेस्ट में जाना चाहते हैं। महज डॉलर का मना नहीं मकसद सबका जाना, वो इसलिए भी जाते हैं कि एक वहाँ पे एक एनवायरनमेंट ऐसा बन गया जहाँ इज्जत नफ्स का तहफ्फुज़ मुमकिन है। तो चेंज में उन्होंने इज्जत नफ्स का तहफ्फुज़ भी डाल दिया, टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन अकेले नहीं की, उन्होंने इज्जत नफ्स, सेल्फ एस्टीम, केयर, लव, रिस्पेक्ट और खौफ खुदा, इंसान दोस्ती, गरीब परवरी, हर चीज को एम्बेड कर दिया। तभी तो लोग पागल होकर जाते हैं। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ जी, वो गरीब सी, आप हैरान होंगे। मैं वाशिंगटन में जब 6-7 साल हो गए मुझे रहते हुए, एक लाहौर से पाकिस्तानी मेरा दोस्त आया, गवर्नमेंट ऑफिशियल, मेरे घर ठहरा हुआ था। मैंने कहा तुम आए हो पाकिस्तान एक हफ्ते रहे हो, क्या नजर आया वाशिंगटन और इस्लामाबाद में फर्क? कहते हैं वाशिंगटन में एक डिश वॉशर की बेटी को वही सोशल प्रोटेक्शन हासिल है जो प्रेजिडेंट ऑफ यूएसए की बेटी को सोशल प्रोटेक्शन और सहूलतें और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक्सेस हासिल है। ये उसने तजिया एक लाइन में कर दिया। अब वेस्ट ने इस स्टेज पे आने में 150 साल लगाया, हमें 75 साल हो गए हैं, लेकिन जर्नी ऑफ 1000 माइल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। पहले स्टेप में आप दे देना कि जी LDA आपको एक हफ्ते में मकान का नक्शा बना देगी ऐप के जरिए, नहीं बन सकता, उसकी वजह पता है आपको, मैं नाम भी नहीं ले सकता क्यों नहीं बनता। अच्छा, इसी तरह आपने पंजाब यूनिवर्सिटी या UET से डिग्री लेनी है अपनी, तो 10 चक्कर या 4 चक्कर या 5 चक्कर लगेंगे, 6 जगह फॉर्म बयान हल्फी जमा कराएंगे तो एक सर्टिफिकेट आप देंगे जी गुम गई है। अगर आपकी डिग्री गुम गई आप मुजरिम है कि गुमाई क्यों है, पुलिस से थाने की रिपोर्ट, बयान हल्फी, उसके साइन, शनाख्ती कार्ड, फी और तनख्वाह या फीस एक खास जगह जमा करानी है, उसके अलावा कहीं जमा नहीं करा सकते। ये पूरी दुनिया एप ड्रिवन पे आ गई है। हम अभी तक 1860 का उसी पे लेके बैठे हुए हैं, पंजाब पुलिस का एक्ट, हमने उसको चेंज नहीं किया। इसी तरह हमने डोमिसाइल कल्चर को भी चेंज नहीं किया। ये चीजें रिडंडेंट हो गई हैं। वो इकबाल एक शेर में कहता है, जमाना आया है बेहजाबी का, दीदारे यार आम होगा। दीदारे यार बसले महबूब नहीं है, दीदारे यार कन्वीनियंस और कम्फर्ट है। ये सिंबॉलिकली यूज हो रहा है, कम्फर्ट और कन्वीनियंस क्या है कि मुझे पार्किंग में आधा घंटा ना लगाना पड़े। अब उन्होंने एक काम और वेस्ट ने किया, उन्होंने मैं तोड़ दी। ये मेरे साथ वाकया हुआ है। मैं Washington DC में जब काम करता था तो वॉशिंगटन के साथ दरिया है और मैं वर्जीनिया में रहता था, दरमियान में जो हद है फासिल है वो दरिया था। अब वॉशिंगटन छोटा सा शहर है, उसमें पार्किंग बहुत महंगी है, एक दिन की पार्किंग $20-30 की आज से 30 साल पहले थी, अगर आप लेते हैं तो। मैं वॉशिंगटन से पहले पेंटागॉन है, पेंटागॉन की पार्किंग थी अपनी 40-50 हजार गाड़ियों की। अब वो GHQ के बराबर है। उन्होंने कहा जी पेंटागॉन में हर अमेरिकन, हर आउटसाइडर गाड़ी पार्क कर सकता है। तो मैं अपनी गाड़ी पेंटागॉन पार्क करता था, वहां से अंडरग्राउंड मेट्रो ली और $2 में $1 में अपने दफ्तर पहुंच के मेरी पार्किंग की हासिल खत्म हो गई। अब मैं हैरान हो गया कि उसमें ये नहीं था कि 1-star, 2-star, 3-star की पार्किंग दफ्तर के साथ है। 40,000 गाड़ियां, जो पहले आएगा वो गाड़ी उसकी वहां खड़ी हो जाएगी नियरेस्ट प्लेस पे, और जो लेट आएगा बेशक वो जो मर्जी हो, 30 मरखा हो, फन्ने खां हो, 22 ग्रेड हो, वो अपनी गाड़ी आखिर में खड़ी करेगा जहां पे उसको मेरिट पे आती है, लेट आने की सजा मिलेगी उसको। अफसरी का भरम उन्होंने खत्म कर दिया, मैम मार दी, जो बुल्ले शाह नहीं कहता पहले अपना मैम, उन्होंने मैं मुका दी। अब मेरे सामने था कि मैं एक स्टूडेंट हूँ ऑर्डिनरी थर्ड वर्ल्ड का, अगर मैं जल्दी आ गया तो मुझे पार्किंग मिलेगी, वरना 1 मील दूर पार्क करके 1 मील पैदल चल के आऊंगा मैं। ये जो मुसावत है महमदी का कल्चर उन्होंने चेंज मैनेजमेंट के तनाजुर में एम्बेड किया तो मुल्क तरक्की करने लग गया।
1: बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बड़ी जो है ना एनर्जाइजर एक किस्म का था ये आपकी, जो आपने जिस तरह इसको कम अल्फाज में बहुत सारी चीज़ों को आपने अहाता कर दिया। हम इसको सिलसिले को जारी रखेंगे, अभी वक्त है म्यूज़िक ब्रेक का, और म्यूज़िक ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो इसी की मुख्तलिफ जो डायमेंशन है उसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। हमारे साथ रहिए।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए, ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
3: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 UCP की दुनिया।
4: सूफी सिंग्स हू दैट विच इज दैट विच वॉज दैट विच विल बी।
5: मुसलमानी के दौनक रमज़े दिन रो نساید پیش غیر الله جبین رو اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین رو این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke duniya.

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

0: why we are here. Mainu pata tere dil vich ki lokan nu saadi samajh hi nahi main janda baby tu jandi main tera tu mere layi. We are UCP ki duniya FM 92.6.
1: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया UCP की दुनिया UCP की दुनिया।

102.66. Number one radio station, FM 92.6, UCP ki duniya.

0: Hey, this is Fakhar Abbas and you are listening to FM 92.6 UCB ki duniya. UCB ki duniya.
1: Fun, entertainment, news, knowledge 24/7 only on UCB FM 92.6 UCB ki duniya.
2: एक नया अंदाज,
3: एक नई सोच,
2: एक नई पहचान,
3: एक नई लगन.
2: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान.
3: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से.
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहसो तकरार हो आने वाले वक्त की,
3: जहाँ बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर वन.
2: जब मिलती है लगन,
3: मेहनत,
2: कामयाबी और खुलूस,
3: तो बनती है
2: यूसीपी की दुनिया.
3: आप सुन रहे हैं FM 92.6.
2: सुनते रहिए.
4: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे. जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं. जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं. जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं. ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं. इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो. अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय University of Central Punjab.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: last 3 years.
1: Okay, अगर हम इसी के साथ बात करें, जैसे हमने इंट्रो में बात की थी कि आप जनरल मेंबर भी हैं प्राइम मिनिस्टर के जो नेशनल यूथ काउंसिल है उसके, सो आई वॉन्ट टू आस्क यू कि व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ दिस प्रोग्राम एंड इसका क्या प्रोसीजर है और आप इसमें कैसे एंटर हुए, इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें.
0: Prime Minister National Youth Council is a government initiative by the Prime Minister of Pakistan. और उसके अंडर जो है ना एक नेशनल यूथ काउंसिल का क़याम हुआ, दिस इज़ सेकेंड बैच. और इसका सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि इसकी मेंबरशिप का क्या तरीका कार था, तो सबसे पहले वी हैड यू नो फिल द फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद हमारा शॉर्ट लिस्टिंग हुई, देन वी हैड इंटरव्यूज़, उसके बाद बैकग्राउंड चेकिंग, एंड देन फाइनली वी वर कॉल्ड एज सेलेक्टेड मेम्बर्स. पूरे पाकिस्तान में से, बल्कि पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी में जो है ना, इंक्लूडिंग ट्रांसजेंडर्स, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ या स्पेशल एबल्ड पर्सन, उन सबको इंक्लूड करके 113 लोगों की एक नेशनल यूथ काउंसिल बनाई गई, जिसका मकसद ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर के जो भी इनिशिएटिव्स है उस पर एक पॉलिसी एडवाइस करना हमारा. और क्योंकि पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में से लोगों को सेलेक्ट किया है, ताकि जो प्राइम मिनिस्टर के यूथ प्रोग्राम के अंडर जो भी इनिशिएटिव्स होते हैं उनको अपने एरियाज़ में बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करना और कोऑर्डिनेट करना आपस में, ताकि वो बेहतर रह सकें.
1: बिल्कुल ठीक आपने बताया, हम इसी को लेके आगे चलेंगे और इस पर मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे और इसके बारे में मज़ीद जानेंगे भी कि कैसे यूथ इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है और कैसी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं. अभी वक्त हुए एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया.

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया
1: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया, प्रोग्राम नखले अदब। आज हमने अपने प्रोग्राम में जिस चीज को डिस्कशन का टॉपिक बनाया था वो था यूथ, उनके मसाइल, कल्चर और लिटरेचर। हमने डिस्कस किया कि यूथ के मसाइल क्या हैं, उनके लिए प्राइम मिनिस्टर के जो कुछ यूथ प्रोग्राम्स थे वो क्या थे और उनके 4 E's जिस पर वो काम कर रहे हैं वो क्या थे। जो हमारे साथ बात कर रहे थे असदुल्ला खान, उन्होंने हमें 4 E's के बारे में बताया, वर्किंग एरियाज के बारे में बताया। असद, आपको क्या लगता है, आप भी यूथ हैं, इस वक्त यूथ के मसाइल क्या हैं और वो किस तरह बेहतर हो सकते हैं?
2: जहाँ तक यूथ के मसाइल की बात है, सबसे पहले यूथ में जो है ना बड़े डिविजन आ गई है। वी डू नॉट वेरीफाई थिंग्स। सबसे पहले सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा हमारा रुझान हो गया, जो वहाँ में दिखता है सो विदाउट वेरीफाइंग इट हम उसे बिलीव कर लेते हैं।
1: मिसइंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा
2: एग्जैक्टली। और उसके अलावा यूथ के लिए नो डाउट देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अगर हम बात की जाए, प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम प्रोवाइड्स लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ एंगेजमेंट। उसके अलावा यूथ यू नो एजुकेशन रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट, एंगेजमेंट रिलेटेड। इसके अलावा देयर आर लॉट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूथ लेड ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है और ऐसे प्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है यूथ के लिए। सबसे पहले तो हमारी जो एक मायूसी का एक आलम चाहे हुआ है, यू नो वी नीड टू ओवरकम दैट। और उसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, हमें जो है ना उसके हंट करना चाहिए। यू नो जितना टाइम हम सोशल मीडिया पे लगाते हैं, अगर उसको हम प्रोडक्टिवली लगाएं अच्छी अपॉर्चुनिटीज सर्च करने में, सो डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आप कर सकते हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं ना कि पाकिस्तान के लिए कोई मेल या फीमेल किसी भी फील्ड में एक अच्छा नाम जो है ना कमा के आए, दे यू नो विन समवेयर अब्रॉड, तो हम में से ही लोग हैं। बात यह कि प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, यू नो वेन यू आर हार्ड वर्किंग एंड यू हैव अ टैलेंट दैट कैन नेवर बी बीटन, वो कहीं ना कहीं नजर आ जाता है। और हमारे माइंड में एक जो पर्सपेक्टिव बिल्डअप किया गया कि यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है या गवर्नमेंट हमारे लिए बिल्कुल कुछ नहीं कर रही, ऐसा नहीं है। वी नीड टू हैव अ वेरी प्रोग्रेसिव माइंड सेट और ग्रोथ के लिए हमें बड़ा टाइम अवेलेबल होना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। और जहाँ तक यूथ की बात है, अगेन व्हाट आई पर्सनली बिलीव के सबसे मेजर इशू है वो है यूथ एम्प्लॉयमेंट, कि जो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, जो हमारे करिकुलम है और जो हमारी इंडस्ट्री में उसकी रिक्वायरमेंट है स्किल सेट की, दैट इज़ अ कम्प्लीट डिफरेंट मिसमैच। तो वो ब्रिज गैप करने की जरूरत है, ताकि हमारी जो यूथ है वो अगर बैचलर डिग्री भी करे, जिस प्रोग्राम भी किया, फॉर एग्जांपल यू कैन बी फ्रॉम मैथ्स कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट और फ्रॉम BBA डिपार्टमेंट, तो आपके जो रेलिवेंट इंडस्ट्री है वहाँ पे आपको जो है ना ईजिली अगर आप जॉब करना चाह रहे तो जॉब होनी चाहिए। और मैं जो समझता हूँ, अगर एजुकेशन से रिलेट करूँ, मेजर इशू जो मुझे लगता है कि हम जो है ना एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट जो है ना प्रमोट नहीं कर रहे हैं। अगर हम जो है ना यूथ को और अपने स्टूडेंट्स को इस एज में अपना बिजनेस की तरफ रुझान नहीं बढ़ाएंगे या उसकी तरफ एजुकेशन नहीं करेंगे, तो देयर इज़ नो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट कि वो एक बार बैचलर्स पूरी कंप्लीट करे और फिर जब मार्केट में उसको पता लगे कि मुझे तो जॉब भी नहीं मिल रही, अब मैं क्या करूँ, वो जो एक सिचुएशन थी वो होपलेसनेस की आ जाती है। तो मेरे ख्याल से करिकुलम करियर फोकस्ड होना चाहिए, उसके अलावा जो एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज है उसको जो है ना बड़ा आम होना चाहिए, बी इट एस लॉ स्टूडेंट, मैथ्स कम्युनिकेशन, कोई भी हो उसको पढ़ाने चाहिए, ताकि बिजनेस को उसको पता हो, बिजनेस को हमें प्रमोट करना चाहिए। दैट इज समथिंग आई वुड ऐड।
1: अच्छा, आपने अपने बिल्कुल इंट्रो में बताया था कि करेंटली यू आर वर्किंग ऑन विमेन एजुकेशन, तो उसका मेन पर्पस क्या है, वो आपने कहाँ स्टार्ट किया है, अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं?
2: That is my own initiative because as I mentioned earlier, I'm from Quetta, Balochistan, जहाँ पे unfortunately women education का अभी तक है सच इतना रुझान नहीं है, but I see hope कि अभी बेहतर हो रहा है। और वहाँ पे काफ़ी underprivileged लोग हैं जिनको एजुकेशन की एसेस नहीं है। एक तो कल्चर बैरियर भी बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा पीपल हु डू नॉट अफोर्ड, सो एजुकेशन इज़ यू नो सो सेकेंडरी, के जिसके पास रात को खाने के लिए कुछ नहीं है और उसको अपना घर चलाना मुश्किल है, सो एजुकेशन माने नहीं रखती उनके लिए फिर। सो उनके लिए मैंने इनिशिएटिव ये उठाया कि अपने घर में आई एम यू नो एजुकेटिंग राउंड अबाउट 250 फीमेल्स राइट नाउ। ये शुरू हुआ था 12 फीमेल से और अब इट्स अराउंड 250। हम अपने घर में उनको जो है ना पढ़ाते हैं, फीमेल्स ही पढ़ाती हैं उनको, और उसके स्किल्स भी काम करते हैं, सच एज कुकिंग स्किल्स, एम्ब्रॉयडरी स्किल्स, ताकि वो जो है ना सिर्फ पढ़ाई करे बल्कि उसके साथ अपने स्किल्स इंप्रूव करे और वो इंडिपेंडेंट वुमेन भी बन सकते हैं। اور اس کے علاوہ ہم ان کے ایتھکس کی جو ہے نا کلاسز وغیرہ بھی رکھتے ہیں. سو ایک یہ ایسا انیشیٹو ہے جس میں وٹ آئی کین کلیئرلی اینڈ کانفیڈینٹلی سے کہ بڑا کرسٹل کلیئر ڈفرینس آیا ہماری پوری کمیونٹی میں, کیونکہ جو چھوٹی بچیاں پڑھتی ہے اور ان کو جس طریقے سے ایتھکس پہ اسپیشلی فوکسڈ ان کو بتایا جاتا ہے بیک ہوم, اور وہ جب جا کے گھر میں جس طریقے سے رہنا شروع ہو گئی ہے, یو نو دا پیرنٹس آر کمپلیٹلی سیٹسفائڈ اینڈ دے آر امیزڈ آئی ووڈ سے کہ کمپلیٹ ایک چینج نظر آ رہا ہے. اور اس ایک انیشیٹو سے اب کافی زیادہ جو ہے نا لوگ ملیں گے یس دیٹ ایجوکیشن از ویری امپورٹینٹ اسپیشلی فار فیمیلز, تو ایجوکیشن کی طرف ان کا ایک رجحان بڑھا ہے. دیٹ از سم تھنگ اٹ از گوئنگ بیک فرام 2012, اب بھی اٹ از ان اے کنٹینیوس پروسیس, اور آئی ایم انٹینڈیڈ کہ کچھ ٹائم بعد اس کو مین اسٹریم کر کے بہتر طریقے سے کروں.
1: اچھا, اس میں کوئی ایج لمٹ ہے یا پھر یہ سب کے لیے؟
2: ایسا اس میں تو ایج لمٹ نہیں رکھی ہوئی, بٹ موسٹلی جو آتے ہیں وہ انڈر پریولیجڈ ہوتے ہیں, اور چھوٹی بچی ہی آتی ہے فرام دا ایج آف آئی ووڈ سے فار دا ایج آف 4 ٹل 10 زیادہ تر یہ ہوتے ہیں.
1: تھینک یو سو مچ اسد, آپ نے وقت نکالا اور آپ نے ان سب موضوعوں پر بات کی جو شاید ہماری یوتھ سننا بھی چاہ رہی تھی, اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ مین پرپز کیا تھا یوتھ پروگرام کا اور نیشنل یوتھ کاؤنسل, اور جہاں جہاں آپ کام کر رہے ہیں بیسٹ وشیز فار یور فیوچر, اور آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو یہی تھا آج کا ہمارا شو, امید ہے آپ کو شو پسند آیا ہوگا. آپ ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں انسٹاگرام پیج پہ FM 92.6 UCP ریڈیو پر, اور اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ نئے گیسٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی. سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا. خدا حافظ.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: Listen. Learn. Discover. With Radio Station FM 92.6 UCB ke din mein.
1: आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व है। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए, ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
3: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 UCP की दुनिया।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

این صدای لاهور است، این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید FM 92.6

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आमना महमूद, मुखातिब हूं आपसे FM 92.6 यूसीबी की दुनिया से। सामेन, आज के डिजिटल दौर में हर कंपनी, छोटी हो या बड़ी, सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन सिस्टम्स का यूज करती है, लेकिन सॉफ्टवेयर बनाना और उसे स्मूथली चलाना दोनों अलग चैलेंजेस हैं। यहाँ पर DevOps का रोल सामने आता है। हमारा आज का टॉपिक है DevOps, आज की IT दुनिया का गेम चेंजर। DevOps एक मॉडर्न अप्रोच है जो डेवलपमेंट यानी सॉफ्टवेयर बनाने वाली टीम और ऑपरेशंस यानी सॉफ्टवेयर को चलाने वाली टीम को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है। ये टीम वर्क, ऑटोमेशन और स्पीड पर फोकस करता है ताकि सॉफ्टवेयर सिर्फ फास्ट बने नहीं बल्कि रिलायबल और सिक्योर भी हों। आज हम DevOps के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, टूल्स, करियर ऑप्शंस और इसके फ्यूचर ट्रेंड्स पर रोशनी डालेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद जुल्किफल हसन, जो कि UCP के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट FYT में प्रिंसिपल लेक्चरर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
3: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
2: सर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला।
3: माय प्लेजर।
2: सर, वक्त जाये किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमारे सुनने वालों को बताइएगा कि DevOps होता क्या है और ये आजकल IT दुनिया में इतना पॉपुलर क्यों है।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DevOps एक लेटेस्ट IT का ट्रेंड है जिसमें हम जितनी भी डेवलपमेंट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की, उसकी मल्टीपल टाइम चेक और एरर डिटेक्शन, रिमूवल और फास्ट रिलायबल जो डिप्लॉयमेंट है उसको हम वेरीफाई करते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को DevOps में पाइपलाइंस भी कहा जाता है। तो पाइपलाइंस बनाने का मेन मकसद क्या है कि आप डेवलपमेंट के लोग, QA के लोग और सिक्योरिटी के लोग, सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए और वहां पर उन तमाम टीम्स को आपस में कनेक्ट करके एक रिलायबल फास्ट सॉफ्टवेयर को ऑन एयर करें ताकि वो एक बेस्ट टूल जो है वो उस इंडस्ट्री के लिए साबित हो।
2: सर, क्या DevOps सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए है या हर IT प्रोफेशनल को इसे सीखना चाहिए?
3: देखिए जी, अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस की बात करें, इट कंप्राइजेज ऑफ मल्टीपल डिपार्टमेंट्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नो डाउट एक डिग्री प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक प्रोफेशन है, लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर हाउस की बात करें तो इट कंप्राइजेज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जिसके अंदर फुल स्टैक है, मान स्टैक है, आपके पास QA है, नेटवर्क है, सिक्योरिटी है, और अब एक DevOps स्पेसिफिक सेपरेट डिपार्टमेंट है। और उसका मेन मकसद क्या है कि उन तमाम टीम्स को पहले काम सारा का सारा ऑफलाइन और ऑन प्रीमिसेस हुआ करता था, तो अब DevOps के आने के बाद ये सारा का सारा काम एक नई जो टेक्निक है जिसको हम ETL कहते हैं, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, यानी आप कहीं से कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको उस फॉर्मेट में लेके आते हैं जिस फॉर्मेट में आपकी रिक्वायरमेंट है। दैट मींस कोई भी एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को किस तरह बनाना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और क्या वो हमने मीट कर ली कि नहीं, और फिर वो जिस को जो भी आपका क्लाइंट है उसके एनवायरमेंट में, यानी फॉर एग्जांपल हम बात करें AWS की, Amazon की, या हम सर्विस नाउ की बात करें, तो बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं जो पाइपलाइनिंग के हवाले से और स्पेसिफिकली DevOps के हवाले से बहुत ज्यादा फेमस है आजकल।
2: सर, जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो CI और CD का नाम भी सुनने में आता है। सर, ये क्या होते हैं और ये सॉफ्टवेयर डिलीवरी को कैसे फास्ट बनाते हैं?
3: देखें, CI/CD है कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट, नाम से ही बड़ा क्लियर है। कंटीन्यूअस जो इंटीग्रेशन है, इसका मतलब यह कि हम थोड़ा सा, यानी जो भी डेवलपर्स हैं, थोड़ा सा कोड लिखेंगे और वो पुश करेंगे टू QA डिपार्टमेंट कि आप इसको चेक कर लें, रिलायबिलिटी, नंबर ऑफ टेस्टिंग मैकेनिज्म है उसके थ्रू उसको वेरीफाई कर लें कि क्या जो हमें क्लाइंट रिक्वायरमेंट, जिसे हम यूजर रिक्वायरमेंट या इलिसिटेशन कहते हैं, क्या वो और जो हमने चीज अभी तक की है वो इन लाइन है कि नहीं। अगर है तो वो ओके हो गया, आप उसको पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट कर देते हैं, अगर कोई चेंजेस हैं तो रिवर्ट बैक, रोल बैक हो जाती है। दैट्स इट।
2: लिसनर्स, वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक का. हमारे साथ रहें, सुनते रहें FM 92.6 UCP की दुनिया.

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। यूसीपी की दुनिया।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे डेवऑप्स के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर ज़ुल्किफ़ुल हसन, अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे CI और CD के बारे में, और उसमें आपने जिक्र किया टूल चेन का। तो सर, आजकल कौन सी पॉपुलर टूल चेन चल रही है, हमारे सुनने वालों को उसके बारे में आगाही दें।
2: मैम, जिस तरीके से अभी हमने बात भी की स्पेसिफिकली CI/CD की, CI/CD के अंदर बेसिकली अगर हम डेवलपमेंट लैंग्वेजेस की बात करें, फुल स्टैक और मन स्टैक दो हमारे पास डिफरेंट डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी उसके अंदर हम डिफरेंट लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं
1: जी।
2: और ना सिर्फ वो लैंग्वेजेस हैं, वो फ्रेमवर्क्स भी हैं। अब उन फ्रेमवर्क्स के अंदर फर्दर जो हम चीज बहुत ज्यादा लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमने एक चीज डिप्लॉय कर दी, डेवलप कर दी, क्लाइंट की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो ये चाहता है कि फॉर एग्जांपल, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया
1: जी।
2: और आप ये चाहते हैं कि आप, यानी फॉर एग्जांपल जो पॉपअप स्क्रीन आपके पास आए तो वो आपसे साइन इन या साइन अप मांगे। बहुत सारे अगर हम अपने FIP स्टूडेंट्स की बात करें तो वो जब भी कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हैं वो भूल जाते हैं कि हमने वैलिडेशन करनी है
1: जी।
2: वैलिडेशन का मतलब ये है कि हम कोई भी ईमेल एड्रेस डाल रहे हैं तो हमने उसके पासवर्ड की कोई सर्टन लेंथ या डिफिकल्टी लेवल डिक्लेयर करना है बैकएंड पे, ताकि अगर वो किसी भी क्लाइंट को हैंडओवर करें तो किसी तरीके का कोई फिशिंग अटैक, कोई मैन इन मिडल अटैक या ओवरऑल पूरा

0: अगर हम बात करें तो मोस्टली हमारे पास क्लाइंट्स रेफरल्स के बेसिस पे आते थे, और वहाँ प्रॉब्लम क्या होता था कि वो ये कहते थे कि आप अपने सॉफ्टवेयर हाउस में, जैसे नेटसोल है, सिस्टम्स है, पाकिस्तान के बहुत पाइनियर सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, तो उनको कहा जाता था कि आप अपने इन्वायरमेंट में, यानी अपने सॉफ्टवेयर हाउस में एक इन्वायरमेंट बनाएं, यानी एक सर्वर कन्फिगर करें, उस इन्वायरमेंट के अंदर सारी की सारी क्लाइंट रिक्वायरमेंट डिप्लॉय करें, रेडीनेस करें, और फिर एक मीटिंग करें, उनको दिखाएं कि ये आपकी रिक्वायरमेंट थी, ये हमारी प्रोडक्ट रेडी होगी, अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस अगर आप ओके करते हैं तो आप सेम एनवायरनमेंट अपनी तरफ क्रिएट करें और हम मंथ लेंगे, टू मंथ्स लेंगे और डिप्लॉय करेंगे। तो अब उस चीज को टोटली खत्म कर दिया गया, यानी वो जो सर्वर ऑन प्रीमिसेस था वो खत्म करके एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। और क्लाउड कंप्यूटिंग में आपके पास तीन बहुत बड़े जो है वो वेंडर्स हैं, जिसमें सबसे पहले अमेज़न वेब सर्विस, फिर आपके पास गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, और थर्ड माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर। करंटली अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की बात करें तो FOIT CS के अंदर हम अपने स्टूडेंट्स को क्लाउड कंप्यूटिंग के कोर्स के अंदर तीन सर्टिफिकेशंस भी करा रहे हैं, जिसका मेन मकसद क्या है कि हम उन्हें फाउंडेशन लेवल, उनको डिप्लॉयमेंट लेवल और CICD, ये तीनों यानी सोल्यूशन आर्किटेक्ट के चीजें बनानी किस तरह, डेवलप किस तरह करनी है, डिफरेंट यूज केसेस देके, केस स्टडीज से उनको थ्योरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट CICD से रेलेवेंट टास्क देके डिप्लॉय करके क्लास में दिखा के, ताकि उनको क्लास में किया हुआ काम जब इंडस्ट्री में लैंड करें। अब जितनी भी इस वक्त लिंक्डइन पे जॉब्स आ रही हैं उसमें फुल स्टैक, मन स्टैक प्लस GCP, अजोर, AWS का एक्सपीरियंस मांगा जाता
1: है।
0: तो we should be thankful to Amazon, specifically then our university, कि उन्होंने हमें ये पूरा प्लेटफॉर्म दिया, और उस प्लेटफॉर्म की बेस के ऊपर करंटली अगर हम देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर परफॉर्मिंग रियली वेल। हमारे क्लाउड के जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएटेड हैं अभी तक कोई भी जो है वो बेरोजगार नहीं है,
1: माशाल्लाह से, यानी हम बिल्कुल प्रोफेशनल्स हम रेडी करके भेज रहे हैं,
0: रेडीनेस है, मार्केट रेडीनेस को हम फॉलो कर रहे हैं।
1: जबरदस्त। अच्छा सर, अगर हम ऑटोमेशन की बात करते हैं और ऑटोमेशन में अगर कुछ फेलियर हो जाता है तो सबसे इम्पोर्टेंट हमें इशू डिटेक्ट करना और फिर उसको रिजॉल्व करना है, तो सर कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो हमें इस सारे प्रोसेस में हेल्प कर सकती हैं?
0: देखिए मैडम, बहुत वैलिड क्वेश्चन है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि दुनिया में एक रूल है, उसे कहते हैं रोल बैक या बैकअप्स।
1: जी,
0: माइक्रोसॉफ्ट ले लें, गूगल ले लें, अमेजोन ले लें, लोकल इंडस्ट्री उठा लें, सॉफ्टवेयर हाउसेज उठा लें, जितनी भी टेक इंडस्ट्री इस वक्त एग्जिस्ट करती है वो कोई भी प्रोडक्ट बनाती है हमेशा 3 बैकअप्स रखती है, एक ऑन प्रीमिसेस, एक ऑफ प्रीमिसेस और एक DR, जिसे हम डिजास्टर रिकवरी
1: रिक्वायरमेंट ही है।
0: हाँ जी, और ये तीनों चीजें इसलिए की जाती है कि अल्लाह ना करे कि मेन सर्वर डाउन हो गया। मैं ASP की एग्जाम्पल देता हूँ, आपके मुल्क के अंदर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज द ओनली सर्विस प्रोवाइडर, बाकी सारे सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, PDCL डाउन हो तो पाकिस्तान डाउन हो जाता है। वेयर एज आप US में हो, UK में हो, मिडल ईस्ट में हो, यू हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस कि अगर PDCL, एक एग्जांपल है, PDCL डाउन हो गया तो कोई भी अदर जो जैन है या कोई भी और जो नेटवर्क है वो फौरी तौर पर अप हो जाएगा। तो बताने का मकसद ये कि ये जो बैकअप का कल्चर है ये इसलिए बनाया गया कि हम वीकली, मैं एग्जांपल, जो तो क्रिटिकल सर्वर्स हैं वो तो 24 आवर, यानी बैंकिंग सेक्टर सबसे क्रिटिकल, बैंकिंग सेक्टर और मेडिकल सेक्टर।
1: बिल्कुल,
0: बैंकिंग सेक्टर क्यों क्रिटिकल है, आप देखें ऑल द टाइम ट्रांजेक्शन चल रही होती, वहां ब्लिंक ऑफ आई का भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो अल्लाह ना करे कि सिस्टम डाउन हो गया, इंटरनेट डाउन हो गया, उनके इंटरनली वो गड़बड़ हो गई, तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रांजेक्शन है अक्रॉस द ग्लोब। मैं पाकिस्तान की बात करूं तो कोई भी बैंक जो है वो ये बियर ही नहीं कर सकता कि क्लाइंट की कोई भी ट्रांजेक्शन उनके मेन सिस्टम में पंच ना हो, वो ATM की ट्रांजेक्शन है, वो ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग है, व्हाटएवर, या कैश है, क्लियरिंग है, वो व्हाटएवर, वो यानी साइमल्टेनियसली मेन सर्वर पर भी और साइमल्टेनियसली बैकअप पर भी, लेकिन अगर कोई डाउन हो जाए, मेन सर्वर डाउन हो जाए तो फौरी तौर पर जो बैकअप सर्वर है या DR है, ब्लिंक ऑफ आई में वो सेटिंग है, ये सारी की सारी कन्फिग्रेशन है। और सबसे ज्यादा जो इश्यूज आते हैं वो मिस कन्फिग्रेशन के, या जो पैचेज आए होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की हम बात करें तो विंडोज के अंदर वो बार बार भेजते हैं कि, यानी फॉर एग्जाम्पल वीक अगो, 10 डेज अगो कोई एक पैच भेजते हैं कि अब इस टाइम पर विंडोज को ये वाला पैच इंस्टॉल करना चाहिए यूजर को, सो दैट के वो इस जो तरह के अटैक्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो उनको फेस ना हो
1: और वर्किंग भी स्मूथ हो।
0: जी
1: अच्छा सर, अगर कोई फ्रेशर स्टूडेंट डेवऑप्स को सीखना चाहता है तो सर उसे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए?

बहुत वैलिड क्वेश्चन मैडम। इस वक्त अगर मैं एजीसी की बात करूं तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है DLSEI, डिजिटल लर्निंग स्किल एनहांसमेंट इनिशिएटिव। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने थ्रू एजीसी कॉर्सेरा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये कहा गया कि यूनिवर्सिटी के एक्टिव जो लर्नर्स हैं, देखिए हर बंदे ने एक अंडर ग्रेजुएट की होती है, एक पोस्ट ग्रेजुएट, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम इतनी फास्ट चेंजेस

0: इंटरव्यू क्रैक करने की भी वीडियोस वहाँ हैं कि आपने इंटरव्यू की प्रेपरेशन किस तरह करनी. तो इन आर ग्रेजुएट्स करेंटली लोकली तो वो क्रैक कर लेते हैं, बिकॉज मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि हम मार्केट रेडीनेस के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं. और थैंक्स टू डॉक्टर अमजद, स्पेसिफिकली डॉक्टर मोहसिन, कि उनकी एक विजन है, उनका एक उन्होंने हमें एक लाइन दी, डायरेक्शन दी कि इसको फॉलो करें. लेकिन इन पैरेलल टू दैट उसमें जो एक्टिवली रोल है वो हम तमाम फैकल्टी मेंबर्स का, वो तमाम फैकल्टी मेंबर्स जो मन स्टैक, फुल स्टैक, डेवऑप्स, क्लाउड सिक्योरिटी, ये फ्यूचर ट्रेंड है, इसके ऊपर ये अगर हम नहीं करते तो हम वे बैक हो जाएंगे फ्रॉम इंडस्ट्री रेडीनेस से.
1: बिल्कुल. लिसनर्स, वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक का. हमारे साथ रहें, सुनते रहें FM 92.6 UCP की दुनिया.

0: University Studios.
1: Where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जुल्किफल हसन के साथ डेवऑप के बारे में। अपनी गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। सर, डेवऑप्स में अगर कल्चर बनाने का हम बात करते हैं तो इसमें टीम वर्क या टीम कोलेबोरेशन का क्या रोल है?
4: मैडम, इस वक्त अगर हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की पाकिस्तान के अंदर बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं, बहुत सारी ऐसी ट्रांजिशन है। अगर मैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की बात करूं, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की बात करूं, पाशा की बात करूं, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एसोसिएशन की बात करूं, तो कुछ स्टैंडर्ड जिस तरह पाकिस्तान बने हुए 75 ईयर्स 78 ईयर्स हो गए, पाकिस्तान के अंदर डेटा प्रोटेक्शन एक्ट और साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है, लेकिन डेटा से रेलेवेंट स्पेसिफिकली इस तरह की ट्रेनिंग्स या जो इंडस्ट्री रेडीनेस से रेलेवेंट बहुत ज्यादा काम नहीं हो रहा। वो कल्चर किस तरीके से आना है? देखें, जितने इंडस्ट्री के अंदर इस वक्त लोग बैठे हैं, सीईओज हैं, सीओज हैं, सीटीओज हैं, वो तमाम लोग जो हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं और वो तमाम लोग जो इंडस्ट्री को एक किसी ना किसी एक डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं स्पेसिफिकली, उनको अपने अंडर जो कमांड लोग हैं उनको स्पेसिफिक, जिस तरह पहले ही होता था, मैं एग्जांपल देता हूँ कि आई वर्क फॉर एग्रो एंड फॉर फर्टिलाइजर, तो वहां पर उनके अपने इंटर्न है, जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में भी सीपीई है, सेंटर फॉर प्रोफेशनल एक्सलेंस। तो होता यह कि यूनिवर्सिटी के अंदर से ही डिपार्टमेंट नॉमिनेट करता है कुछ फैकल्टी मेंबर्स को कि ये फैकल्टी मेंबर्स को हम ये ट्रेनिंग्स कराना चाहते हैं, तो आप काइंडली सीपीई को कहते हैं कि आप इंडस्ट्री से या यूनिवर्सिटी के अंदर से कुछ सीनियर इनकी इन लाइंस पर ट्रेनिंग करते हैं। जिस समय एग्जांपल देता हूँ, आजकल एचईसी ने सीएलओ पीएलओ ओबीई वाला जो इनिशिएटिव लिया उस पर हमारे डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग्स चल रही। तो इंडस्ट्री के अंदर, सॉफ्टवेयर हाउसेज के अंदर जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उनके अंदर ये चीज इनकॉर्पोरेट करें, स्पेसिफिक लर्निंग से रेलेवेंट कल्चर क्योंकि बिल्ड करना है। तो वो ये है कि वो तमाम लोग जो काफी ज्यादा जिनको 10 इयर्स प्लस हो गए एक ही डोमेन, उनकी इन नए इमर्जिंग ट्रेंड्स के ऊपर ट्रेनिंग्स करें। और ये एक दो दिन से नहीं, अगर आप कहें कि 1 वीक 1 मंथ 6 मंथ्स की ट्रेनिंग कर ली तो सारा कुछ आ गया, ऐसे नहीं है। 2 मंथ्स की ट्रेनिंग करें, फिर उनको इंडस्ट्री में भेजें, चेक करें कहां लैग करें, वापस बुलाएं, फिर बुला के उन स्पेसिफिक पे ट्रेनिंग करें। इट विल टेक अ ईयर, बट वंस दे विल बी ग्रूम्ड दे विल बी अ मास्टरपीस फॉर द इंडस्ट्री एंड फॉर द सॉफ्टवेयर हाउस फॉर्चुनेटली।
3: बिल्कुल सर, अगर हम डेवऑप्स के फ्यूचर की बात करें तो आपके नजदीक इस साल सबसे बड़ा ट्रेंड क्या होगा?
4: सबसे बड़ा ट्रेंड इस वक्त जो है वो थैंक्स टू गूगल सबसे पहले, फिर अमेजोन एंड माइक्रोसॉफ्ट। गूगल का क्यों थैंक्स किया कि दिस इज द 7th ईयर कंटिन्यूस आई एम वर्किंग विद गूगल, गूगल पाकिस्तान, टेक वैली इस्लामाबाद, और वो उनका इनिशिएटिव ये है कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एंड ग्रेजुएट्स के लिए एक प्रोग्राम रन करते हैं और उसका नाम है क्लाउड सीखो। उसका मेन मकसद क्या है, वो इस उनके इनिशिएटिव का मेन गोल क्या है कि वो ये करते हैं कि जो भी करंटली एक इमर्जिंग डोमेन है उससे रेलेवेंट 5 to 10 कोर्सेज प्लस उनकी प्रैक्टिकल लैब यानी वो यूज केसेस उनकी डिप्लॉयमेंट। तो इस वक्त जो 2025 के अंदर मजीद इसको आगे लेके चलना है वो ये है कि जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो $100 के वाउचर्स देता है स्टूडेंट्स को, अमेजोन की बात करें तो उन्होंने एकेडमी अकाउंट्स दिए, वो लर्निंग के लिए हम ऑलरेडी चला रहे हैं, गूगल ये चला रहा है। यूनिवर्सिटीज को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये करना है कि अगर किसी जगह हम लैग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बाज कैसे होता है, अगर माइक्रोसॉफ्ट की या अमेजोन की बात करें कि $100 बच्चा जल्दी यूज कर लेता है, या हमारे एंड के ऊपर सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में क्रेडिट्स की कमी आ गई, तो यूनिवर्सिटी पाकिस्तान एज अ कंट्री, HEC एज द स्टैंडर्ड एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन एक स्टैंडर्ड बिल्ड कर दे ताकि उससे वो बच्चे जो वो चीज अफोर्ड नहीं कर सकते स्पेसिफिकली। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने थ्रू प्राइम मिनिस्टर ग्लोबल IT सर्टिफिकेशन डिफरेंट इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए। करंटली हम दी फोकल पर्सन फॉर ग्लोबल IT सर्टिफिकेशन UCP, जिसके अंदर ओवर 100 प्लस ग्लोबल सर्टिफिकेशंस जिसमें ऑल इमर्जिंग सर्टिफिकेशंस हैं, उसका मुझे यहाँ पर फोकल पर्सन बनाया कि आप और सर्टिफिकेशन की ट्रेनिंग करें, वो भी फ्री है, वो भी नेवटेक UCP भी करा रहे, UCP इज पार्ट ऑफ दैट इनिशिएटिव, वो आप ट्रेनिंग करें और अगर आप उसका ग्लोबली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन एग्जाम देना चाहते हैं वो आप टेस्ट का ग्लोबली वाउचर बाय करें, एग्जाम दें और वो फीस हम आपको रीइंबर्स करें। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान।

0: पाकिस्तान जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान।
1: वेरी नाइस सर, एआई और मशीन लर्निंग की अगर हम बात करते हैं तो सर डेवऑप्स पाइपलाइन को ये किस तरह स्मार्टर बना रहे हैं?
0: देखिए मैडम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ रेवोल्यूशन। वी हैव टू एक्सेप्ट अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में वन ऑफ माय फैमिली मेंबर दे लिव इन यूके, जैक्स इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्कूल इन यूके, वहां पर क्लास 5 में एआई के बेसिक्स क्लास 5 में कराए जा रहे हैं। तो अगेन हमें एकेडमिक रिफॉर्म्स की जरूरत है पाकिस्तान के अंदर, प्राइमरी लेवल के ऊपर, सेकेंडरी लेवल पे। क्यों? क्योंकि जब तक ये चीज हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे अपने छोटे बच्चों में, वहां से वो हम शुरू करेंगे एआई डेवऑप्स के अंदर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे तो इंटीग्रेट कर रहा है, लेकिन ये कल्चर है, ये एक माइंड सेट है। जब तक क्या वो नीचे से यूजर एक्सेप्टेंस नहीं होगी, हमारे पेरेंट्स से हम भी अगर बात करेंगे हम ये कहेंगे नहीं एआई नहीं यूज करना, आप खुद सोचो। तो मेरे ख्याल में हमें ये चाहिए कि एआई से करवाओ और उसे मजीद बेहतर करो, रिफाइन करो एंड मेक इट मोर नेचुरल, ताकि वो यूजर एक्सेप्टेंस या इंडस्ट्री या एकेडेमिया में नजर जाए कि आपने लर्न किया लेकिन उसको आपने सूटेबली मॉडिफाई कर ली।
1: सर, एक सक्सेसफुल डेवोप प्रोफेशनल बनने के लिए कौन कौन सी स्किल्स जरूरी हैं?
0: सबसे पहले तो स्क्रिप्टिंग, जिसमें पाइथन है सबसे पहले, फिर बैश है, फिर क्लाउड एंड फाइनली CI/CD। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि वो तमाम ग्रेजुएट्स, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, न्यूली ग्रेजुएट, सबसे पहले तो अपनी जो स्किल्स हैं पाइथन से रेलेवेंट वो बेहतर करें। अगेन लर्निंग के लिए हमारे पास यूट्यूब है, कोर्सेरा है, इवन आप यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम ओपन AI, GPT की हेल्प लें, जेमिनी को पायलट, आप टेक हेल्प, इवन आप LLM, बहुत सारे LLMs आ गए, नोटबुक LLM, यूज दोज AI टूल्स फॉर लर्निंग एंड इम्प्रूविंग योर स्किल्स। देखें प्रोग्रामिंग, इट्स बीन 15 ईयर्स इन करियर ना, यू कैन नॉट टीच प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग इज एन आर्ट, और उसमें यह है कि वो लॉजिक बिल्डिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो बच्चे के अंदर से इग्नाइट होती है, और उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि आपने बच्चे को ऐसे रियल लाइफ प्रॉब्लम देने कि वो सोचे
1: जी,
0: और फिर वो सोचेगा वर्ड में, यानी वर्ड प्रॉब्लम सोचेगा और उसको वो कन्वर्ट करे इनटू अ लॉजिक। दिस इज द क्राइटेरिया बेसिकली।
1: और सर प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी
0: है। बहुत जरूरी है जी, बहुत जरूरी।
1: लिसनर्स, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और डेवोप जैसे मॉडर्न और टेक्निकल सब्जेक्ट को बहुत आसान अल्फाज में एक्सप्लेन किया।
0: थैंक यू, जज़ाकअल्लाह।
1: उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स को डेवोप्स के बारे में बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिला होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए सुनते रहें FM 92.6 UCP की दुनिया। अल्लाह हाफिज।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है। हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
1: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
2: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: करोगे?
1: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें,
2: छोड़े अंकल।
3: खबरदार, छूना मना है।
4: मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।

अनचाही कॉल या पैगाम की शिकायत के लिए मुतालिका फोन नंबर्स के हमरा 9000 पर SMS करें। गुमनाम नंबर से आने वाली कॉल्स या SMS के जवाब में अपनी खुफिया जाती मालूमात हरगिज ना दें। BTA

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
2: नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन,
2: नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबिल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व है। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

Assalamualaikum Pakistan, आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 यूसुफ की दुनिया और मैं आपके होस्ट आपकी दोस्त मेहर सगीर अपने सभी सुनने वालों को अपने सभी चाहने वालों को और अपने प्यारे प्यारे सामीन को तहे दिल से कहती हूँ खुश आमदीद जी आया नो वेलकम और भली कराया उसे उम्मीद करती हूँ जनाब कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आज का दिन बेहद अच्छा गुजरा होगा। जी जनाब, आज हम दियारे गजल के साथ हैं आपके पास, यानी आपकी समातों से हमारी आवाज़ टकरा रही। लेकिन अभी ऐसा करते हैं कि आपको गुलाम अली की खूबसूरत सी आवाज़ में एक खूबसूरत सी गजल सुनाते हैं।

ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा भी ना था। अरे क्या खूबसूरत बात कह दिया गुलाम अली साहब ने। वो कहते हैं ना कि कुछ अल्फाज जो होते हैं वो दिलों को चीर जाते हैं, ऐसे जैसे दर्द भी ना हो, यानी दर्द ना हो और दुआ भी हो जाए। क्या कमाल हो गया ना। जी हाँ जनाब, यही खूबसूरत आवाज़ें ही तो हैं जो दर्द भी नहीं देती और कमाल भी कर जाती हैं। यही तो खासियत है इन लाजवाब आवाज़ों में। तो जनाब, आज जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि आज हम बात करेंगे मदद के बारे में, कि हम दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं, हम कैसे पहचान सकते हैं कि हाँ हमारे सामने वाले को हमारी मदद की ज़रूरत है और हमें वाकई उसकी मदद करनी चाहिए, ये हम कैसे पहचान सकते हैं। तो जनाब, बहुत ही सिंपल सा आप कह लीजिए एक फार्मूला है, और वो फार्मूला कुछ ऐसा है। जब हम कहते तो हैं कि इंसान की जो आंखें होती हैं वो उसके

दिल का आईना होती हैं, यानी उसकी जो आंखें होती हैं वो उसके दिल की कहानी कह रही होती हैं, जो उसके ऊपर बीत रही होती है वो उसका हाल सुना रही होती हैं। और आंखें पढ़ने का भी जो गुण होता है जना, वो किसी किसी को आता है, बहुत ही खास लोगों को आता है, बहुत ही कम लोगों को आता है। तो अगर आपको लगे कि आज कोई उदास है, अच्छा मुझे बहुत जल्दी पता चल जाता है किसी को उदासी है या कोई परेशान है, क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर आप किसी परेशानी में हैं तो आपका जो फेस है वो जैसे ऐसा लगता है कि बहुत थके हुए हैं, बहुत काम करके आए हैं, बहुत मेहनत करके आए हैं। तो जनाब यही बात होती है, वो कुछ ऐसा हुआ कि एक दफ़ा इश्फाक अहमद साहब कहते हैं, मैं इश्फाक अहमद साहब को बहुत पढ़ती हूँ, तो इश्फाक अहमद साहब कहते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने एक टैक्सी कराई और मैंने उस टैक्सी वाले को ना पैसे दे दिए। तो मेरे पास कुछ टूटे हुए पैसे थे, तो मैंने उनको कुछ पैसे जो थे टूटे हुए वो मैंने टिप दे दी। तो अब मेरे बाबा जी पास खड़े थे, तो मैंने बाबा जी को कहा कि मेरे पास बाबा जी इतने हैं, मैंने उसे दे दिए ना। तो बाबा जी ने कहा तुमने कितने पैसे दिए ना। तो इश्फाक अहमद साहब ने कहा कि मैंने ये इतने पैसे दिए। तो उनके बाबा जी ने कहा कि ज़्यादा दे देते। उन्होंने कहा ये क्या बात कह रहे हैं बाबा जी, मैंने तो उन्हें पैसे दे दिए। उन्होंने कहा हाँ तुमने टैक्सी वाले को टिप दी है, तुमने उन्हें पैसे दिए हैं, लेकिन तुमने कौन सा अपने पल्ले से देने थे, तुमने कौन सा अपने पास से देने थे, तुमने भी तो उसके दिए हुए में से देने थे। तो जनाब यही बात होती है, हमारी औकात ही क्या है। हाँ अगर मुझ में रहम ना डाला गया होता तो मुझ में रहम ना आता, अगर मुझ में मोहब्बत ना डाली गई होती तो मुझ में और आप में, हम सब में एहसासात, मोहब्बत, दुश्मनी, नफरत ना आती जनाब, हम इसके काबिल ही नहीं हैं। लेकिन हाँ ये एहसास, ये नफरत, ये दुश्मनी, ये हस्त, ये मोहब्बत, ये सारे एहसासात जो हमारे अंदर हैं, इन्हें किसी ना किसी मकसद के लिए डाला गया है, किसी ना किसी मकसद के तहत हम आए हैं यहाँ पे। हो सकता है कि आज आपके दिन का मकसद हो कि किसी के चेहरे पे खुशी ले आओ, किसी को खुश कर दो, इससे बड़ी नेकी क्या कर सकते हो आप। हम सारे इधर उधर घूमते हैं, ढूंढते हैं, अरे आज मुझे सुकून नहीं मिल रहा, मैं आज मुतमईन नहीं हो रहा। अरे जनाब अगर खुशी चाहिए, अगर मुतमईन होना है तो बहुत ही आसान सा हल है, खुश हो जाओ। खुश कैसे होगे? दूसरों को खुश करके। अब दूसरों को खुश करना कैसे? बहुत छोटा सा एक फ़लसफ़ा है ज़िंदगी। हाँ ज़िंदगी एक फ़लसफ़ा ही तो है, एक अफसाना ही तो है, एक ऐसा फ़लसफ़ा, एक ऐसा अफसाना जो हम खुद लिख रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता। बहुत सारी चीज़ों को हम पीछे छोड़ रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ों को हम लेके आगे जा रहे होते हैं। तो जनाब आसान सा है, अगर किसी की आंख में आंसू हैं तो वो आंखों आंसू साफ कर लीजिए। अरे वो कैसे कर सकते हैं? कुछ ऐसा कह दीजिए कि उसकी आंखों से आंसू बहना बंद हो जाए और उसके लबों पे मुस्कुराहट आ जाए। जो मुस्कुराहट होती है ना बहुत कीमती होती है, और यकीन मानिए अगर आपकी वजह से किसी एक इंसान के लबों पर भी मुस्कुराहट आ गई ना तो ज़िंदगी कमाल हो जाएगी। वो जो खुशी मिलेगी ना आपको, आप सोच भी नहीं सकते। किसी का दिल हम जोड़ देते हैं, किसी को कोई खुशी दे देते हैं, किसी परेशानी में है हम उसकी बात सुन लेते हैं, कोई कुछ काम करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा, डिस्करेज है, उसको इनकरेज कर देते हैं, हौसला दे देते हैं, हिम्मत बंधा देते हैं, थपकी दे देते हैं। वो कहते हैं ना कि प्यार की थपकी चाहिए होती है हम सबको कुछ ना कुछ करने के लिए, तो हम वो दे देते हैं। अरे ये मदद ही तो है, बिन चाहे मदद कर रहे हैं, बिन कहे मदद कर रहे हैं, तो कीजिए ना। और ये खूबसूरत सी आवाज़ सुनिए नैरा नूर की, और आइए देखते हैं कि वो हमसे क्या कहती है, बल्कि सुनते हैं जनाब।

0: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए, अरे शहंशाह गजल की आवाज हो और उस गजल में वो एहसास ना हो, वो एहसास जो दिलों को छू जाए, वो एहसास जो हमारे अंदर एक जज्बा सा जगा जाए। पता है, मैं जब भी इनकी आवाज सुनती हूँ कुछ अजीब सा लगता है, कुछ ऐसा जैसा जादू सा हो गया है, जैसा एक दुनिया बिल्कुल जादू की है, जादू सी दुनिया है। और ऐसी दुनिया है जहाँ से मुझे वापस आने का बिल्कुल डर नहीं करता। मैं चाहती हूँ कि भाई मैं उस दुनिया से वापस ना आऊँ। अरे यही तो बात होती है ऐसी आवाज़ों की, जिन्हें जितना भी सुने लगता है कि उन्हें और सुनना है, दिल चाहता है कि उन्हें और सुना जाए। हाँ, इसलिए शहंशाह गजल कहते हैं उन्हें। तो जनाब, मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये खूबसूरत सा जो आप ट्रैक सुन रहे थे, ये पाकिस्तान की एक बहुत ही खूबसूरत मूवी अफशा उसका नाम था, उसमें से ली गई गजल थी। 1971 को ये मूवी रिलीज़ हुई थी। वहीद मुराद और शबनम पे ये सॉन्ग पिक्चराइज हुआ था। जो म्यूज़िक दिया था इसका वो नौशाद साहब ने दिया था। और यकीन मानिए, मैंने जो म्यूज़िक जिस तरह से अल्फाज के साथ म्यूज़िक का जिसे कितने तरतीब होती है, मौसीकार को भी कहा जाता है ना, जैसे मैं एक बात काफ़ी बार कह चुकी हूँ कि एक पेंटर जो होता है वो अपनी तस्वीर कैनवस पे बनाता है, लेकिन पता है जो मौसीकार होता है वो अपनी मौसीकी किस पे तरतीब देता है? जनाब, एक मौसीकार अपनी मौसीकी जो है वो खामोशी पे तरतीब देता है। अब खामोशी क्या होती है? अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कहेंगे, जनाब ये कैसी बातें कर रही है, खामोशी पे मौसीकी तरतीब दे दी? अरे मौसीकी तो बहुत ही बड़ी बात है, वो एक ऐसी चीज़ है कि आप बैठे बिठाए तो उसे बना नहीं सकते। अरे जनाब, लफ्ज़ों का उतार चढ़ाव क्या होता है किसे पता, मेरे और आप जैसे आम लोग तो कर भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते कि लफ्ज़ जब उतरते हैं और चढ़ते हैं उनमें जो सराहट होती है। हमारा जो लास्ट शो था, जो हमारा पिछला प्रोग्राम था, उसमें हमने एक सिंगर को बुलाया था, नुमान अली को। तो नुमान अली ने हमें एक सिखाया था, उन्होंने राग, उन्होंने कहा था जो हम कहते हैं सारे गामा पादा नहीं सा, है ना, कहते हैं ना। हाँ, मैंने ऐसे बोल दिया, लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं बोला जाता। इन लफ्ज़ों की अदायगी में कई घंटे लग जाते हैं। और उन्होंने एक बात कही थी कि गाना, मतलब गाना एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको गाना नहीं ना आता तो आप ना करो, गा ना, गा नहीं सकते तो ना गाओ। तो जनाब, यही बात होती है एक बड़े फनकार की, एक बड़े मौसीकार की और एक बड़े गुलाकार की, कि वो लफ्ज़ों को समझते हैं, वो उन लफ्ज़ों के साथ जुड़ी हुई उस मौसीकी को समझते हैं। अब जैसे मुझे मेहदी हसन की बहुत सारी गज़लें पसंद हैं, जैसे उनका एक गज़ल, उनकी एक गज़ल है, आज तू गैर सही प्यार से बैर सही, तुझे अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं, ये उनकी गज़ल है। इसके अलावा उनकी गज़ल है ये कागज़ी फूल जैसे चेहरे, मजाक उड़ाते हैं आदमी का, इन्हें जाके कोई ये बता दे मकाम ऊँचा है सादगी का। अच्छा, अगर आप गौर करें तो इतने खूबसूरत अल्फाज हैं, ठीक है, इतने खूबसूरत अल्फाज हैं, और आप जब इन गज़लों को सुनते हो रियल वॉइसेस में, रियल मौसीकी में, ये कागज़ी फूल जैसे चेहरे ये वहीद मुराद पे पिक्चराइज हुआ था, अगर आप देखना चाहें, और आज तू गैर सही प्यार से बैर सही ये नदीम बेग और शबनम मैम शबनम पे ये पिक्चराइज हुआ था। और जिस तरह से मौसीकी है ना जनाब, वो बेहद हसीन है। और यही बात होती है कि हम आज इतनी सदियों के बाद भी इन आवाज़ों को सुनते हैं, मुझे तो बेहद पसंद है। मैं मोस्टली पुरानी मौसीकी सुनती हूँ, वो इसी वजह से सुनती हूँ क्योंकि जनाब खूबसूरती बहुत है, एक ऐसी खूबसूरती जो दिल को बस कहती है कि बस हम जकड़ लेती है, काबू में कर लेती है। तो जनाब बातों से बात निकलती जाती है और बात कहाँ तक पहुँच जाती है। तो जैसा कि हम अपने प्रोग्राम में आपसे कुछ शायरी भी शेयर करते हैं, और इसके अलावा बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, जिस यार ते यार हजारा होवन, जिस यार ते यार हजार होवन, उस यार नू यार ना समझिए, उस यार नू यार ना समझिए, जरा हद तो वत के प्यार करे, उस प्यार नू प्यार ना समझिए। होवे यार ते देवे हार, होवे यार ते देवे हार तेनू, उस हार नू हार ना समझिए। बुल्ले शाह, बुल्ले शाह भावे यार जिनाते गरीब होवन, बुल्ले शाह भावे यार जिनाते गरीब होवन, ओदी संगत नू बेकार ना समझिए। अरे वाह, क्या ही बात कर दी बाबा बुल्ले शाह ने। उन्होंने बात की है दोस्ती के, कि दोस्ती अभी मैं बात कर रही थी सर्फ की, अभी नहीं कर रही थी, थोड़ी देर पहले कर रही थी। तो बाबा बुल्ले शाह ने भी कैसे खूबसूरती से उस सर्फ को और दोस्ती को एक खूबसूरत पैरहन में परो दिया है। क्या ही बात कर दी ना, कि दोस्त जैसा भी हो उसकी दोस्ती को बेकार ना जानो, क्योंकि वो तो इंसान है, औलाद तो जनाब सब आदम की है ना। अरे तुम्हें कैसा गरूर है, मुझे कैसा गरूर है, हम तो मट्टी हैं, मट्टी हैं, मट्टी हो जाएंगे। जैसे कहते हैं, दोस्ती करना बड़ा मुश्किल होता है, दोस्ती निभाना बड़ा मुश्किल होता है। एक चीज़ होती है मट्टी पे मट्टी से मट्टी लिखना, आसान है ना। हाँ सबने कहा आसान है, लेकिन जनाब दोस्ती करना ऐसा ही है, मट्टी पर मट्टी से मट्टी लिखना, और दोस्ती निभाना बेहद मुश्किल, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। और अब कुछ अल्फाज सुनाते हैं, कुछ आवाज़ सुनाते हैं, एक खुशकुन सी आवाज़ आपकी समातों की मुंतजर है, तो आइए सुनते हैं नूर जहाँ की खूबसूरत सी आवाज़ में ये खूबसूरत सी गज़ल।

भूल कर एहदे वफा मुझको रुलाने वाले। अरे मलके तरन्नुम नूर जहाँ की आवाज हो और ये खूबसूरत सा ट्रैक पिक्चराइज हो सेबा बेगम और मोहम्मद अली पे। ऐसी आवाजें जो दिल के करीब है और साथ साथ ऐसे चेहरे जनाब जो अपनी मिसाल आप ही हैं। और ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि ये सॉन्ग आप सुन रहे थे पाकिस्तान की एक बहुत ही मशहूर फिल्म नजमा से, जो कि 1970 को यानी 1970 को रिलीज़ हुई थी। इसमें मरकजी जो किरदार अदा किए थे वो ज़ेबा और अली साहब ने अदा किए थे, जो हकीकी ज़िंदगी में भी कह लीजिए कि वो रफ़ीक हयात थी मोहम्मद अली की ज़ेबा मैम। तो जनाब आज हम बात कर रहे थे मदद के बारे में और कुछ हमने बीच में आपको पोइट्री भी शेयर की बाबा बुल्ले शाह की। तो जनाब वही बात आती है ना कि मदद करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। एक बात है, इश्फाक अहमद को मैंने कहा कि मैं बहुत पढ़ती हूँ, तो इश्फाक अहमद कहते हैं कि मैंने कहा बाबा जी आज कोई बातें सुना दे, तो उनके बाबा जी ने बोला बेटा कोई आज तुमने पौधा हरा किया? तो उन्होंने कहा नहीं बाबा जी, ये कैसे मैं बूटा हरा कर सकता हूँ, लाइक पौधे लगा सकता हूँ, अब पौधों को लगाने में टाइम लगता है, फिर उनको हरे करने में टाइम लगता है, उनको बढ़ने में उनको नशोनुमा पाने में वक्त तो लगता है। तो उनके बाबा जी कहने लगे कि पुत्र जिन लोगों ने बूटे हरे किए हों वो कभी सूखते नहीं हैं। अरे समझ आया, मैं समझाती हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर हमने कहीं भी कुछ अच्छा कर दिया हो, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, शायद बहुत पीछे जब आप छोटे से हों, चलें ऐसे कर लीजिए आप 13-14 साल के थे, किसी की आपने मदद कर दी बिल्कुल बेलोस होकर, आपने नहीं चाहा कि मुझे उसकी मदद, उस मदद के बदले आपको कुछ चाहिए, नहीं आपने नहीं कहा, यू डोंट वांट कि वो इंसान आपको उस मदद के बदले कुछ दे, अच्छा ठीक है बेगर्स मदद कर दी, अब क्या हुआ काफ़ी साल बाद आप उसी हालात में खड़े हो, उसी जगह पे हो जहाँ वो इंसान कुछ साल पहले था, उसी वही जगह है, वही सिचुएशन है, सब कुछ वैसा है, क्या होगा पता है क्या होगा, आपकी मदद के लिए कोई और इंसान आ जाएगा। हाँ लिखवा लीजिए ये बात, पता है क्यों, वो इसलिए जनाब क्योंकि ये जो मदद करना होता है ना, जैसे मैंने पहले भी कहा था हर किसी के बस की बात नहीं होती। अब जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा इल्म होता है और वो नहीं चाहते कि वो दूसरों को इल्म दें, अरे मैं पढ़ा लिखा हूँ ज़रूरी नहीं है मैं अपना दिमाग जो है वो सबको दूँ, अच्छा दिमाग नहीं दे रहे होते वैसे जनाब, अपना इल्म बांट रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम कतरा जाते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा वो एक बात होती है ना, हम लोग जज करना बहुत शुरू कर देते हैं, हम ऐसा कह लें कि जज इस सूरत में कि हम दूसरों के बारे में अपने से ख्यालात कर लेते हैं, वो ऐसा है वो वैसा है ये ऐसा है वो ऐसा है, तो ये जो जज करने की हमारी एक आदत है ना, ये एक बहुत बुरी आदत है मुझे पता है, लेकिन फिर भी हम अपनी इसी आदत के तहत ना कुछ चीज़ें कुछ बातें अज्यूम कर लेते हैं। जैसे अगर आपने कुछ अच्छा काम कर लिया तो लोगों ने मजाक उड़ा दिया, हाँ आजकल के ज़माने में कहा जाता है कि अच्छाई को भी अच्छाई नहीं रहने दिया जाता, उस पर इतनी हंसा जाता है, इतना कुछ कहा जाता है कि आप फिर शर्मिंदा हो जाते हैं कि अरे मैंने कुछ अच्छा किया या कुछ बुरा किया कि हो क्या रहा है मेरे साथ। तो बात ये होती है ज़र्फ की, जिसका जितना ज़र्फ है वो उतना दिखाएगा, जिसमें जितनी बर्दाश्त है जिसमें जितनी सलाहियत है वो दिखाएगा, लेकिन आप अपना काम ना छोड़ें। अगर आपके पास इल्म है और ऐसा इल्म है जो आप ये कह लीजिए कि वो ऐसा इल्म है कि आप दे सकते हैं दूसरों को, तो दीजिए ना, खुद तक रखने का फ़ायदा क्या,
क्योंकि ये इल्म जो है ये आप बांट रहे हो, आप दे रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो। हो सकता है कि कुछ ऐसे अशार, मुझे वैसे पोएट्री पढ़ने का बहुत शौक है, तो अगर कुछ अशार आपके पास आए तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपने मेरी मदद कर दी, मुझे वो अशार बेहद पसंद आए, मैंने उनको पढ़ दिया, मेरे दिल में लग गए, पसंद आ गया मुझे। तो ऐसा कीजिए ना, क्या जाता है। इसी तरह मदद करते रहा करें, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि बहुत अरसे बाद या फिर चंद लम्हों के बाद ही हम उसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ हमसे पहले कोई इंसान खड़ा होता है, हमसे बहुत पहले जो कोई इंसान खड़ा होगा। तो हमें मदद करते रहना चाहिए ताकि हम कम से कम अपने तहत खुद को थोड़ा बहुत बचा लें। हाँ मुझे पता है हमें बड़ा शौक होता है खुद को बचाने का। अरे जब अपने पे बात आई है जनाब, तो अपने को तो बचाना है, अपने आप को तो बचाना है, तो अपने आप को ही बचा लीजिए दूसरों की मदद करके। लेकिन अपने आप को तभी बचा सकते हैं जब दूसरों की मदद बेलोस होके करेंगे, किसी बदले के बगैर। बदला देने वाला ऊपर बैठा है ना, वो देगा। और आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सी आवाज़।

रो रो दुहाए किसी से कोई प्यार ना करे। अरे वाह, माला बेगम की आवाज़ हो और इतनी सुरीली आवाज़ हो तो फिर मेरे पास तो अल्फाज कम पड़ जाते हैं। हाँ, अल्फाज वाकई ख़त्म हो जाते हैं जहाँ से, यकीन मानिए हमने जितनी आवाज़ें आज सुनी, जैसे शहनशाह गज़ल की आवाज़ सुनी, मलके तरन्नम की आवाज़ सुनी, उसके अलावा ग़ुलाम अली की आवाज़ सुनी, माला बेगम की आवाज़ सुनी, नैरा नूर की आवाज़ सुनी, तो मेरे पास तो अल्फाज नहीं रहे, क्योंकि मेरे लिए तो ये एक ट्रीट हो गई है। ट्रीट एक ऐसा जिसे हम कहते हैं ना, हमारे लिए तोहफा, एक तोहफा हो जाता है। हम किसी को बेहतरीन, जिसे आप कह लीजिए तोहफा देते हैं, तो मेरे लिए तो ये बेहतरीन तोहफा था कि मेरे तमाम जो पसंदीदा, आप कह लीजिए पसंदीदा मेरे जो गुलकार थे, सिंगर्स थे, उन सब की मैंने आवाज़ें सुन ली हैं, तो मेरी तो आज वाकई एक ट्रीट हो गई है। तो जनाब, इसी तरह आप दूसरों को भी ऐसी ही खुशी देते रहा करें, उनकी मदद करके। आसान है मदद करना, मुश्किल नहीं है। क्या करना है आपको, दिल थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। बहुत बार ऐसा होता है, हम सारे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हमारी ज़िंदगियों में ऐसे फेजेज़ आते हैं कि मुश्किलात हमारी ज़िंदगी में गाहे पगाहे आती रहती हैं, लेकिन उन मुश्किलात से घबराइए मत, वो आपका इम्तिहान है। और कोशिश कीजिए कि उन मुश्किलात के साथ साथ भी आप दूसरों की मदद करते जाएं, क्योंकि यही तो इंसानियत है कि खुद के पास कुछ ना हो लेकिन फिर भी आप देना जानते हो। अरे क्या ही कहेंगे उस इंसान को, उसके पास खुद कुछ नहीं है लेकिन वो सबको दे रहा है, बांट रहा है। यकीन मानिए, इससे बड़ा अच्छा काम आप कर नहीं सकते। खुशी जो आप 2 सेकंड के लिए भी किसी को दे देते हो, उसके लबों पे आ जाती है आपकी वजह से, आपके आने से, आपके छोटे से अमल से। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़ी मदद करो, हंसा दो किसी को, मदद हो गई। जनाब, प्रोग्राम तैयारी गर्ल्स का जो वक्त है ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल, वक्त को हम पकड़ नहीं सकते, ये चलता रहता है और भाग जाता है, और इतना तेज़ी से भागता है कि गुजर जाता है। तो इसलिए हमारा वक्त अब हुआ जाता है ख़त। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अपना बहुत सा ख्याल रखेंगे और अपने अपनों का भी बहुत ख्याल रखेंगे। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व है, इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

دا آواز دے دا لاہور، دا آواز دے دا یو سی پی، نو آو رہی FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: 24/7 only on FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 यूसीबी की दुनिया।
1: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.ucp.edu.pk. FM 92.6 to life. Station of the nation.

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: मौसीकी के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: Are you tired of feeling lazy and bored? Don't worry. That's why we are here. We are UCP Ki Duniya, FM 92.6.
1: एक नया अंदाज,
2: एक नई सोच,
1: एक नई पहचान,
2: एक नई लगन।
1: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
2: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
2: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1।
1: जब मिलती है लगन,
2: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
2: तो बनती है
1: UCP की दुनिया।
2: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
1: सुनते रहिए।